إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين

उन लोगों के लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनमें वो दाखिल होंगे। वहां उनको सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और उनकी पोशाक रेशमी होगी। वो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे रंजो गम दूर किया, बेशक हमारा परवरदिगार बख्शने वाला है, कद्रदान है, जिसने हमको अपने फजल से हमेशा के रहने के घर में उतारा। यहां न तो हमको कोई तकलीफ पहुंचेगी और न तकान ही होगी। और जिन लोगों ने कुफर किया उनके लिए दोजख की आग है, न उन्हें मौत ही आएगी कि मर जाएं और न दोजख का अजाब ही उनसे हल्का किया जाएगा। हम हर एक नाशुकरे को ऐसा ही बदला दिया करते हैं।

उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे तो साफ साफ पैगाम पहुंचा देना है और बस। वो बोले कि हम तुमको अपने लिए मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई? नहीं, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज कर गए हो। और शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, पैगंबरों के पीछे चलो, ऐसों के जो तुमसे सिला नहीं मांगते और वो सीधे रास्ते पर हैं, और मैं क्यों उस जात की परस्तिश ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है।

जलवा बेरंग था, उस जलवा नुमा से पहले

की कुछ आजादी भी दी है। अब इंसान का इम्तिहान क्या है कि वो इस महदूद आजादी को किस तरह इस्तेमाल करता है। वयुरसिलु अलैकुम हफजा, और वो तुम पर हफजा भेजता है। हफजा क्या है? हाफिज की जमा, जैसे तालिब की जमा तलबा होता है ना। अरबी में तो इसकी बहुत सी मिसालें, मसलन साफिर की जमा सफरा, तो हाफिज की जमा हफजा। हाफिज का माना क्या है? निगहबान, निगरानी करने वाला, हिफाजत करने वाला। और वो भेजता है तुम पर हफजा यानी निगहबान फरिश्ते, जैसे कि एक और जगह पर आता है, इन कुल्लु नफ्सिल लम्मा अलैहा हाफिज, कोई शख्स ऐसा नहीं कि जिस पर कोई निगरान मौजूद न हो। एक और आयत में आता है, वह इन अलैकुम लहाफिजीना किरामन कातिबीना, और तुम पर निगहबानी करने वाले मौजूद हैं जो किरामन कातिबीन हैं। इसकी कुछ और तफसील हजरत अबू हुरैरा की रिवायत से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में दिन और रात के फरिश्ते एक दूसरे के बाद बारी बारी आते रहते हैं। असर और फजर की नमाज के वक्त वो जमा हो जाते हैं, फिर वो फरिश्ते जो रात को तुम्हारे पास रहे थे ऊपर चढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा, हालांकि वो तुमसे खूब वाकिफ होता है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, जब हमने उन्हें छोड़ा वो नमाज पढ़ रहे थे, और जब उनके पास गए तो भी नमाज पढ़ रहे थे। यानी ये फरिश्ते जो अल्लाह ताला भेजते हैं, जो किरामन कातिबीन हैं, जो दाएं बाएं हमारे आमाल लिख रहे हैं, इनकी शिफ्ट तब्दील होती है सुबह और शाम, यानी 12 आवरली ड्यूटी है इनकी। जो फजर की नमाज में आते हैं वो असर की नमाज में अपनी किताब समेट के संभाल के वापस चले जाते हैं, जो कुछ लिखा होता है रिकॉर्ड किया होता है, और फिर शाम की ड्यूटी के आ जाते हैं, फिर वो सुबह तक रहते हैं और वो सुबह की नमाज के वक्त चले जाते हैं। और ये हर रोज होता है। जो किताब ये तैयार कर रहे हैं वो आपकी पहुंच से बाहर। तो यहां पर हफजा का एक माना किरामन कातिबीन, आमाल लिखने वाले फरिश्ते। हाफिज का मतलब क्या होता है? किसी चीज की निगरानी करना। तो ये फरिश्ते दरअसल हमारी निगरानी कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं इस दुनिया में। क्योंकि इससे पिछली आयत में आप देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون, तुम्हें उसकी तरफ वापस जाना है, फिर वो तुमको बताएगा कि तुम्हारे अमल क्या थे। कैसे बताएगा? हमारे आमाल नामे से। आमाल नामा कौन तैयार कर रहा है? उसके भेजे हुए कारिंदे फरिश्ते। वो खुद भी सब कुछ देख रहा है, उसका अपना भी कंट्रोल है बंदों पर, और उसके साथ साथ मुहाफिजीन भी साथ लगे हुए हैं, जैसे पुलिसमैन होता है कि साथ साथ वो निगरानी कर रहे हैं। और फिर हफजा से मुराद कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं कि जो इंसानी आजा की, इंसानी जिंदगी की हिफाजत करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला बंदे की जिंदगी को पूरा करना चाहता है। लियुक्दा अजलुम मुसम्मा, हर रोज रूह लौटाई जाती है ताकि एक शख्स अपनी तबई जिंदगी पूरी कर सके। इसलिए कुछ फरिश्ते अल्लाह ताला ने ऐसे मुकरर किए हैं कि जो हमारी हिफाजत भी करते हैं। एक माना निगरानी करना है और दूसरा माना हिफाजत करना, यानी ऐसे उमूर से, ऐसी चीजों से हमको बचा के रखते हैं कि हम यहाँ जिंदा। अगर अल्लाह ताला की तरफ से बंदे की हिफाजत ना हो तो यहाँ पर जिंदगी बाकी ना रह सके। मसलन एक रिवायत में आता है कि आंख की हिफाजत के लिए 7 फरिश्ते होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कोई चीज आती है आपकी तरफ तो अमूमन आंख को बचा जाती है, आगे पीछे हो जाती है, वरना आप सोचते हैं अगर ये आंख पे लगती तो आंख चली जाती। हत्ता इदा जा अहदकुमुल मौतु, यहां तक कि जब तुम में से किसी के पास मौत आ जाती है, यानी वो रूह जो वापस लौटाई जाती है रोजाना, वो वापस नहीं की जाती और मरने का वक्त आ जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कई लोग सोते हुए ही फौत हो जाते हैं, उठते ही नहीं। तवफ्फत हु रसूलुना, तो फौत कर लेते हैं उसको, कब्ज कर लेते हैं उसको हमारे भेजे हुए। भेजे हुए से मुराद यहाँ क्या है? रसूल से फरिश्ते। ये फरिश्तों की एक और किस्म है जिनका काम जान निकालना है, रूह निकालना है। गोया मौत का एक ही फरिश्ता नहीं, बेशुमार फरिश्ते हैं।

0: ఐరన్ స్టోర్ హాలాణి హోల్సేల్ డిపో ఎ నేమ్ టు బి ట్రస్టెడ్
1: సరియా గార్డర్ టీఎ ఎంగల్ చేనల్ పట్టి లోహి దర్వాజా సిల్వర్ జా చౌక్ సిమెంట్ రేతీ క్రేష్ ఐ రంగ్ వగేరా బజార్ కా బారియా దస్తయాబ్ ఐ
0: హాణి యచో మెహరాన్ ఐరన్ స్టోర్ నజ్ బలోచ్ పెట్రోల్ పంప్ నేషనల్ హైవే హాలాణి
1: రాబ్తే లై ప్రొప్రైటర్ గులాం నబీ ముగల్ 03003204372 ఐ 02424601000
2: अवांजी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवांजी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: सिंध डेंटल क्लिनिक डॉक्टर रफीक अहमद कंसल्टेंट डेंटल सर्जन BDS RDS CNO CRTHO HSA इस्लामाबाद असां वटि बगैर तकलीफ़ जे ॾंद कढिया ऐं नवां ॾंद लॻाया वेंदा आहिनि हर कम जदीद टेक्नोलॉजीअ सां कयो वेंदो आहे जरासीम खां पाक औज़ार वक़्तु सुबुह 8 वॻे खां मंझंदि 1 वॻे ताईं पतो नज़्द गुल होटल हालाणी राब्ते जे लाइ 0301 63 088
4: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर

0: हे वट एड़ी शयूं खांदी कर सेहत ठीक रहंदी
1: तवा खाओ
0: ना ना तू खा तू ना खांदी ते मां के खाइंदम
2: तेरा ख्याल मेरी जिंदगी का सबसे
3: खीर पियारण वाली माओ जी बेहतरीन गिजा माओ ए बार इन्हीं जो हक है ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो जदे माओ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नस्लन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
4: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सरंजाम दे रहा हूं पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
5: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
6: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे
7: अस्सलाम वालेकुम अदा
8: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा
9: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
7: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
8: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
9: ऑफिस जी मेरा पूरा फैम

0: 94 नजगर डिग्री कॉलेज हालानी रोड में रापुर
1: राबते लाए हाकिम अली जिस कहानी
2: 03013992836
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Bengal Habib, Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.
3: चिपको पुलिस मुझे मोबाइल मामूल मुझे बीतल हूँ दिया है. कोयले से भरल ट्रालर तेज रफ्तारी दौरान मोबाइल की टक्कर है. हादसे बाद ट्रालर जो ड्राइवर फरार थी भयो. शहदादपुर में शाहपुर चौकर रोड तेज रफ्तार मज़दा गाड़ी ब्रेक फेल थी वन सबब बंद पल फाटक जो दरवाजो तोड़े कराची का पंजाब वंदड़ पाक पर मौके से फौत थी वो मज़दा के क्लीनर हलंदड़ गाड़ी में टप्पो डई हयाती बचाई. हादसे में फौत थियल मज़दा ड्राइवर ने क्लीनर की सुणप न थी. मड़ जख्मी अस्पताल मुंतकिल. हादसे का ट्रेन कुछ मुफासिले से बीहजी वही. रेलवे जो अप एंड डाउन ट्रैक बंद थी पो.

कोडी जी भरसा फुरमजम ते कतल थियल नौजवान जो लाश रखी धरणो। कुंभ थाने जे अदमिस्त्री शाह स्टाफ वट फुर दौरान हथियार बदन नौजवान गुलाम के कतल कर धरणे सबब रोड ब्लॉक बिनी पासन का ट्रैफिक मुअत्तल थी वई। अमरीकी परडेही वजीर मार्को रूबियो चयो आहे त ईरान खिलाफ प्रोजेक्ट फ्रीडम खे रोकण जो सबब पाकिस्तान जी दरख़्वास्त हुई। पाकिस्तान चयो त जेकॾहिं तव्हां प्रोजेक्ट फ्रीडम खे रोकियो त असां सम्झूं था त असां हिकु मुआहिदे जी पहुची सघूं था। पाकिस्तान जे अहिड़ी दरख़्वास्त ते असां सफ़ारतकारीअ खे मौक़ फ्रीडम खे रोकण ते मुतफ़िक़ थियासीं। सदर ट्रंप सफ़ारतकारी खे तरजीह ॾिए थो ऐं मसइलो ॻाल्हियुनि वसीले हल करणु चाहे थो।

0: का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
4: खुशखबरी खुशखबरी, हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 03800 583569, 03000338569।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राबते जे लाइ 03201800003।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई जी सेल कंपनीया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स अते मौजूद आशिक जे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-91-8851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
0: यार, आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी

0: मीरापुर एफएम 94 ई हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुजे दुकान जी बेड हरंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मीरापुर एफएम 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मीरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
3: 03013992836
0: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03151557024
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: दावा रिपोर्ट में जणाए वियो आहे त उहे पंज शर्तूं पूरियूं करण खां सवाइ अमन अमल खे अॻिते नथो वधाए सघिजे. शर्तनि में ईरान पारां जंग में थियल नुक़सान जे मुआवज़े जी अदायगी जो अमरीका तरफ़ां साफ़ इनकार शामिल आहे. 400 किलो रचाव थियल यूरेनियम ईरान खां मुंतकिल करणु ऐं एटमी ताक़त महदूद करण जो मुतालबो कयो वियो. अमरीका ईरान हासिल में सिर्फ़ 25% ताईं नरमी जो रास्पो ज़ाहिर कयो. लबनान समेत ॿिनि हंधनि ते जारी चिकटाण जे ख़ात्मे लाइ ज़ोर. असां ईरान खे ॻाल्हाइण लाइ हर पर ख़बर फ़ैसिलो करणो कंहिं वज़ीर मार्को रूबियो जो अमरीकी नशरियाती इदारे खे इंटरव्यू. मार्को रूबियो चयो त प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान पारां नल ख़ातिरी ते रोकियो. पाकिस्तान ख़ातिरी कराई त ऑपरेशन रोकण खां पोइ कंहिं मुआदे ताईं पहुची सघिजे थो. अमरीकी सदर बि ईरान सां मामले जो हल सफ़ारतकारी ज़रिए चाहे थो. जंग में थींदड़ ख़ुआरी जो अज़ालो करण लाइ को बि वेकूफ़ाणो क़दम खयो वियो त इस्लामी जमहूरी ईरान सख़्त फ़ैसिलत ऐं हमलनि जी ज़रूरत सूरत में साम्हूं ईंदो. ईरानी फ़ौज जे तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फसल शिकारची चयो. मीडिया सां ॻाल्हियूं जनरल शिकारची चयो त मायूस अमरीकी सदर खे सम्झणु घुरिजे त ईरान ख़िलाफ़ नई जायदाद कई वई त अमरीकी असासा ऐं हुनजे बदनाम फ़ौज तमामु ख़राबु हालतुनि खे मुंहुं ॾींदी. रादड़बड़ सां जवाबदार सोट नारी खे कारे इल्ज़ाम हेठि गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो. कोट नारी में अकबर चाणियो कारे इल्ज़ाम हेठि 20 सालनि जी सोमल चाणियो खे क़तल कयो. इतलाउ ते पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची नारी जो लाश इस्पताल मुंतकिल कयो. पुलिस मूजिब जवाबदार क़तल करे फ़रार थी पियो आहे. कंहिं जल्द गिरफ़्तार कयो वेंदो. गाजी खावड़ भरिसां चांडिया बिरादरी जे बिंदुनि जे झेड़े में औरत मारिजी वई. गोड़ गाज़ी खान मरखंड में पुराणे तकरार सां गोलियूं लॻण सबबु औरत बंबी चांडियो मारिजी वई. इलाइक़े वासियुनि मूजिबि 10 महीना अॻु मारिजी वियल नवाब चांडियो जे पलांद में हमिलो कयो वियो. सिंधड़ी भरिसां पसंदि परणे त नारीअ जे वारसनि पारां पलांद में अॻवा कयल टे नारियूं बाज़ियाबु न थी सघियूं. ॻोठ हाजी अबू बकर जुड़नि जे वासनि 16 सालनि जी रिहाना, 18 साल आसिया ऐं 9 वरनि जी नाज़िया बाज़ियाब न थियूं. पुलिस जे जवाबनि जे घरनि ते चढ़ाई 3 ॼणा गिरफ़्तार करे अणॼतल हंधि मुंतकिल. वाक़े जो केस दाख़िल न थियो. मरीज शाहबर सां मोटरवे ते कराची खां पंजाब वेंदड़ मुसाफ़िर कोच कल्टी, 10 ॼणा ज़ख़्मी. गुडू इंटरचेंज भरिसां हादसे में औरतुनि ॿारनि समेत 10 मुसाफ़िर ज़ख़्मी थी पिया. पुलिस मूजिबि मुसाफ़िर कोच सां हादसो ड्राइवर खे निंड जो झूठो अचण सबबु पेश आयो. ऐं कुंडरी भरिसां ॻोठ रहीम चांडियो में नारी जो घर मां फाहो लॻल लाश हथ. 20 वरनि जी भागुंती ज़ाल करमन कूलीअ जो घर मां लाश मिलियो. इतलाउ ते पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची नारी जो मड़ इस्पताल मुंतकिल कयो. मुड़ुसु करमन कूली चवण आहे त ज़ाल घरू अणबणत सबबु भाउ खाई आपघात कयो आहे. पुलिस मूजिबि शुरूआती तौर ते वाकियो आपघात लॻी रहियो आहे. वधीक जांच करियूं पिया.
2: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़.

रोशनीत मंजिल मजहर स्कूल सर कुर्बान अली मेमन अकेडमिक ब्लॉक जो इनकाद मेहनती मशाक तदरीस बागीचो बाइक ए कार पार्किंग बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमेस्ट्री ए बायोलॉजी जो लेबॉरेटरी ऑडियो ए विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमेस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी ए इंग्लिश ते खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट जरिए मेडिकल ए इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतीजा रांदन जो मैदान ए उते मुनक़द थींदड़ मुकाबला तहरीर तकरीर ए ज़हनी आज़माइश जा मुकाबला पंहिंजे अखियुनि जे नूर नियाणियुनि ऐं प्यारनि पुटनि जे मुनासिब तइलीम ऐं तरबियत लाइ अॼु ई मज़हर स्कूल सिस्टम मेहरापुर जी विज़िट करियो वधीक राब्ते लाइ डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन मेमण मैनेजिंग डायरेक्टर मज़हर स्कूल सिस्टम कॉन्टेक्ट नंबर 03000002

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: तू तो मेरा फैन।
1: ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-96-8851
1: This program is brought to you by
2: Bank Al Habib Rishta भरोसे का
3: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट, अइम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिले, आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
3: जदे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नस्लन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो।
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

अॼु दुनिया में ईमानदार सालस तौर तस्लीम कयो पियो वञे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त आलमी क़यादत खे पाकिस्तान ते मुकमल एतमाद आहे। पाकिस्तान ते आलमी एतमाद 24 लाइ फ़ख्र जोगो आहे ऐं फ़ौजी क़यादत जे किरदार सां मुल्क जी साख बहितर थी आहे। ईरान, अमरीका ऐं नार जा मुल्क पाकिस्तान ते एतमाद कंदा आहिनि। चटादार अमन हासिल करणु सवलो न आहे हूंदो, ॾुखियुनि हालतुनि में सब्र, हिकमत ऐं मुस्तक़िल मिज़ाज जी साख ते वधणु ज़रूरी आहे।

अमरीका ईरान ते ॿीहर हमला करण जूं तयारियूं करण लॻो। इसराइली मीडिया जी दावा, अमरीकी कार्गो जहाज वॾे मक़दार में हथियार खणी इसराइल पहुचण लॻा। इसराइली मीडिया मूजिब अमरीका हथियारनि जी इसराइल आमद जो मतिलबु अमरीका जी ईरान ते ॿीहर हमला करण जी तयारी आहे। पाकिस्तान इनकलाब जी ॿीहर ग़लती वॼाइण ते फ़ैसिलातो जवाब ॾियण जी धमकी। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फसल शिकारची चयो आहे त ईरान ख़िलाफ़ नई जारी जवाब फ़ैसिलातो ऐं तबाह कंदड़ हूंदो। सदर ट्रंप पाकिस्तान जे चवण ते प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकियो। सदर ट्रंप हिन वक़्त बि ईरान मसइले जो हल सिफारतकारी ज़रिए चाहे थो। अमरीकी परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त पाकिस्तान चयो त प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकण सां मुआहिदे जा इम्कान मौजूदु आहिनि। तहरान में फ़ैसिला केरु करे रहियो आहे, मुंझारा मौजूदु आहिनि।

यूएई खे खबर हण घुर्जे त ईरान जे सबुर जी हद आहे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनाई जी मिलिट्री सेक्रेटरी मासन रज़ाई चयो ऐं इसराइल विच में लाॻापन यूएई खे इसराइली साज़िशनि में न फासणु घुर्जे। तेहरान अबू ज़ेबी सां दोस्ती जा दरवाज़ा बंदि न आहिनि कया।

0: 9027234. Nisar Ahmed Memon, Principal, Mazhar School System, Mehrapur. 0301-3865453.
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-3883-8559।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत-ए-मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।

0: 36.
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

0: वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो सूर अचण शुगर बी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो इंफेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ
1: 0301-91-8015। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हज़रात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वाह अदा, छो परेशान आई?
2: अदा न पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न? अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा फोरी हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम में सिटी करहड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी।
3: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरा पुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Bank of Rishta Bharose Ka.
2: हमलनि तयारी कर रहे वाहे हथियारनि सां भरियल कार्गो जहाज इसराइल पहुची रहिया आहिनि. पासदारन इनकलाब जे अमरीका खे ॿीहर गलती वरजाइण जे फ़ैसिला तो जवाब ॾियण जी धमकी. तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फसल शिकारची चयो आहे त ईरान ख़िलाफ़ नई जहाज जो जवाब फ़ैसिलातो ऐं तबाह कंदड़ हूंदो. पाकिस्तान की सॼी दुनिया में ईमानदार सालसतो तस्लीम कयो पियो वञे. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त आलमी क़यादत खे पाकिस्तान ते मुकमल एतमाद आहे. पाकिस्तान ते आलमी एतमाद पाकिस्तान लाइ फ़ख्र जोॻो आहे. सियासी ऐं फ़ौजी क़यादत जे किरदार सां मुल्की साख बहितर थी रही आहे. ईरान अमरीका नार जा मुल्क पाकिस्तान ते एतमाद करे रहिया आहिनि. चटादार अमुन हासिल करणु आसान नाहे हूंदो. ॾुखियुनि हालतुनि में सब्र ऐं मुस्तक़िल मिज़ाजी सां अॻिते वधणु ज़रूरी आहे. सदर ट्रंप पाकिस्तान जे चवण ते प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकियो. सदर ट्रंप हिन वक़्त में ईरान मसले जो हल सफारतकारी ज़रिए चाहे थो. अमरीकी परॾेही वज़ीर मार्को रोबियो चयो आहे त पाकिस्तान चयो हो त प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकण सां मुआहिदे जा इम्कान मौजूदु आहिनि. तेहरान में फ़ैसिला केरु करे रहियो आहे? मुंझारा मौजूदु आहिनि.

पाकिस्तानी साज़िश ज़रिए अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। तहरान अमरीकी तजवीज़ुनि ते जवाब ॾेई चुको आहे। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो आहे त अमन हुरमत बाबति ईरान जा ओमान ॿियनि सां राब्ता जारी आहिनि। यू ए ई समेत ख़िते में मौजूदु कंहिं मुल्क सां दुश्मनी नाहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो क़तर जे परॾेही मामलनि बाबति मुल्कती वज़ीर सां फ़ोन ते राब्तो। इसहाक़ डार ऐं मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल ख़लीफ़ी विच में इलाक़ई सूरतहाल ते ॻाल्हियूं, इलाक़ई चैलेंजेस खे मुंहुं ॾियण लाइ ॻाल्हियुनि ऐं सफ़ारतकारी राब्तनि ते ज़ोर। क़तरी वज़ीर जे सूरतहाल में पाकिस्तान जी तामीरी सफ़ारतकारी सफ़ारती किरदार जी वाखाण। कराची जे ॾखण सेशन कोर्ट जो मनशा टीलर पिंकीअ खे अमन अमान ज़रूरतहाल सबबु जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करण जो हुकुम। जांच ऑफिसर दरख़्वास्त कई त सिटी कोर्ट में अमन अमान ज़रूरतहाल पैदा थियण जो ख़दशो आहे। अदालत जी जांच ऑफिसर दरख़्वास्त जेल में ॿुधणी जो हुकुम जारी कयो। ॾखण वज़ीरिस्तान जे इलाइक़े वाना जे रुस्तम बाज़ार में धमाको, टे ॼणा शहीद, चार ज़ख़्मी। डी पी ओ वाना जो चवण आहे त रिमोट कंट्रोल बम धमाके सबबु टे ॼणा शहीद, चार ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। धमाके में अहमद ज़ईब वज़ीर कबीले जे सरबराह जी गाॾी खे निशानो बणायो वियो, जेको हमले में शहीद थी वियो आहे। रादड़वड़ सां जवाबदार नारी खे कारे इल्ज़ाम हेठि गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। घोट नारी में अकबर चांडियो कारे इल्ज़ाम हेठि 20 सालनि जे सूमल चांडियो खे क़तल कयो। इतलाउ ते पुलिस वाक़िए वारे हंधि पहुची नारी जो लाश इस्पताल मुंतकिल कयो। नारी जो भाउ ऐं मामो गिरफ़्तार थियो आहे।

0: वारावर सां पुराणी तकरार तां औरत समेत बजणा कतल हथियार बदन अदालत में जड़ा गोठाणे शान चांडियो के कतल कयो। पलान में मकतूल जे वारसन जो इल्ज़ाम में टायर धुर जे घरन ते हमलो, एक औरत मारजी वई, बे जख्मी मासर जे लाड़े वटा हथियार बदन फायरिंग करे शान चांडियो के कतल कयो। मकतूल जे धुर पलान में इल्ज़ाम में टायर धुर जे गोड़ गाज़ी खान मरकन ते हमलो कयो आहे। औरत बम्बी चांडियो मारजी वई। पुलिस जो चवण आहे त धुरन में पुराणी तकरार तां वाक़ियो पेश आयो आहे। वधीक जांच जारी। सिंधी भरसा पसंद प्रणेता नारी के वारसन पारा पलान में अगवा कल टिन नारियन के कराए न सकी। गोठ हाजी अबूबकर जोड़ने जो वासण सोरन साल की रिहाना अरड़ा साल आसिया अंडान वरिन की नाजिया के पुलिस बाजियाब कर में नाकाम। पुलिस की जवाबदार के घर से चढ़ाई टे जणा गिरफ्तार। वाकई जो केस दाखिल न थो। कोडी जी भरसा हथियार बदन फुर दौरान मज़म्मत नौजवान कतल। वारसन जो लाश रखी थरणो। मिस्री शाह स्टाफ वट फुर दौरान मज़म्मत हथियार बदन गुलाम मुस्तफ़ा बुख्टी के कतल कयो। वाक़े बाद मकतूल जे वारसन ने बुख्टी बाजी जो लाश रखी पुराणे कौमी शहर ते धरणो हयो। जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 3 85 569 0300 3 8 5 6 9

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायंद सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, आईमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिले, आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
4: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग। कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए मोटरसाइकिल जी कार कर

जिंदगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिये थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।

रांदन जो मैदान ऐं उते मुनक़द थींदड़ मुक़ाबला तहरीर तकरीर ऐं ज़हनी आज़माइश जा मुक़ाबला पंहिंजे अखियुनि जे नूर नियाणियुनि ऐं प्यारनि पुटनि जे मुनासिब तइलीम ऐं तरबियत लाइ अॼु ई मज़हर स्कूल सिस्टम मेहराब करियो वधीक राब्ते लाइ डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन मेमण मैनेजिंग डायरेक्टर मज़हर स्कूल सिस्टम कॉन्टेक्ट नंबर 03000002722 निसार अहमद मेमण प्रिंसिपल मज़हर स्कूल सिस्टम मेहराब कॉन्टेक्ट नंबर 03013865453

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

चेहरा वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले, चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर हमने कलाम सुना और इसी के साथ महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आप तमाम तो लोगों को बहुत ज्यादा मुबारक, और इसी के साथ साथ आप प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र किया जाता है, डी स्किन जिक्र किया जाता है ताकि आप लोगों की खूबसूरती मेंटेन रहे, आप लोगों की खूबसूरती बढ़ती रहे और आप लोगों को ये पता हो जनाब मार्केट में आपने जाना है तो आपने कौन से प्रोडक्ट का इंतखाब करना है। तो अगर आप लड़के हैं लड़कियां हैं परेशान बैठे हैं कि भाई ईद भी करीब आ रही है और हमने जो है अपनी स्किन को लेकर कोई भी तैयारी नहीं करी है, स्किन हमारी खराब हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, टेंशन की तो बात है ही नहीं, इसके लिए मार्केट में व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं। तो जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात हासिल कीजिए, अगर नहीं मिल रहे वहां पर आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो आपको नंबर बताया जा रहा है प्रोग्राम के अंदर जिसके ऊपर आप रابطہ करेंगे, कॉन्टेक्ट कीजिए ताकि आप लोगों के एरिया के अंदर भी अवेलेबल हो जाए ये तमाम प्रोडक्ट जो कि आप इजीली जाकर परचेज कर सके। तो अगर आप नंबर डायल करना चाहते हैं तो नंबर है जनाब 03-15-799-0595। ये जनाब महर इरफान सियाल साहब का नंबर है, अगर आप डायल करेंगे तो आपको रिस्पांस मिलेगा, नंबर के ऊपर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए, बात करेंगे महर इरफान सियाल साहब आप लोगों से, उनको बताइए कि आप प्रोग्राम सुनकर जो है ना अवेलेबल कराना

साथ ही अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर वाइट एज के प्रोडक्ट यहाँ पर अभी तक अवेलेबल नहीं हुए हैं, तो आप बस थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दिया करें और आप बता दिया करें कि आपके एरिया में मिल रहे हैं ये प्रोडक्ट या अभी तक नहीं, तो जल्दी से अवेलेबल कराते जाइए। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप किस तरह से हमें सेल फोन उठाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888। अगर आप हमें चाहते हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, और जीए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है। पेज को फिर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ पेज को भी आप फॉलो कीजिए और उसके ऊपर आपको जो हमारी पोस्ट मिलती है उसको भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते रहिए। तो शेयर करते रहिए बहुत ज्यादा वाला, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। जल्दी जल्दी से पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और इसके अलावा इस्तेमाल करते जाइए व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जो कि आप लोगों के लिए है जनाब, आपकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। अगर आप ये सोच रखते हैं ना कि भाई जान हाँ जी, गर्मियों का जब भी सीजन आता है तो अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो ये कहते हैं कि भाई हम प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं, गर्मियों के सीजन में हमारी स्किन जो है वो और ज्यादा मजीद खराब हो जाती है। तो आप लोगों के लिए इस गर्मियों के सीजन में इस तरह के प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं जिनका आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे बल्कि आपकी खूबसूरती को मेंटेन भी करेंगे। चाहे अगर आपके चेहरे पर एक्नी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, या फिर आपके चेहरे पर फेयरनेस का मसला है, या फिर आप कोई अच्छी सी नाइट क्रीम नहीं सर्च कर पा रहे, तो भाई आपके पास व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मौजूद है, व्हाइट एज का फेस वॉश मौजूद है जो कि विटामिन सी से तैयार शुदा है, उसके अलावा व्हाइट एज का ब्यूटी सोप भी मौजूद है, जो लोग सोप लगाते हैं वो सोप वॉश लगाते हैं, इसका जिक्र आ जाता है। तो भाई आपके पास व्हाइट एज की लवली क्रीम होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर एक्नी बहुत ज्यादा आपके चेहरे पर मौजूद है, तो आपके लिए डॉक्टर पिंपल आयुर्वेदिक का ये ट्यूब है जो कि एंटी एक्नी फार्मूला है, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे के एक्नी छू मंतर हो जाते हैं। तो व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स हैं जो कि डॉक्टर पिंपल नाम से ये एक्नी वाला ट्यूब आपको मिल जाता है, इजीली आप कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है ना मजीद बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि भाई आप लोगों को हेयर मूविंग लोशन भी मिल रहा है जो कि 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर मौजूद है, और उसके अलावा आपके लिए लोशन भी मौजूद है। लोशन तो खैर आप सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि प्रोडक्ट इतने सारे हैं। और उसके अलावा डी स्किन के प्रोडक्ट्स की जाने पाते हैं, तो डी स्किन प्रोडक्ट्स भी आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है, और साथ में आपको डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है। ये दोनों प्रोडक्ट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही मुनासिब सी कीमतों के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो आप इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरती को बढ़ाते रहिए, और हमेशा बोलिए जनाब कि आप भी हसीन हैं, खूबसूरत हैं और बहुत ज्यादा खूबसूरत मजीद बनना चाहते हैं। ओके जी, यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन करते जा रहे हैं, इरम हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, बहुत शुक्रिया। कश्यप हमें सुन रही है, वालेकुम अस्सलाम। फहद दे रही है, सऊद दे रही है हमारे साथ नवाबशाह से, और कश्यप आपने गाने की फरमाइश कर दी है, ठीक है जी। उसके अलावा वालेकुम अस्सलाम, खूबसूरत आवाज की मलिका, मेरा नाम आपका नाम मुझे समझ नहीं आया, मोरो शहर से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका, वेलकम खुशामदीद। इमरान अली बिरोही भाई भी हमें सुन रहे हैं, इमरान भाई कैसे ही ठीक ठाक है, मजे में प्रोग्राम सुन रही है हमारा, बहुत शुक्रिया जी। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद है उनको भी वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। और साथ ही साथ आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों को मेंशन करते जाइए, और जरा बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में फन करने के लिए, बिल्कुल रेडी शेडी। ओके, यहाँ पर टाइम भी हुआ जाता है कि हम जरा ना शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद जो इनाम जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब।

कलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राब्ते लाइ 0301-96-8151।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: जडे मां पंहिंजो ख्याल रखंदी आहे त सिहत नस्लन ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर वक्त।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाँ अवे पांजे शहर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन नहन एलर्जी कॉस्मेटिक वचड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज का इशा के नमाज तई हर आचर से सुबह जो 9 वगे का रात 8 वगे तई मरीजन जो इलाज कंदा। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते के लिए 0300 333 8559।
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
4: जने माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नस्लन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफ़ां पेश कयो वियो।
5: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे पहले भी पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
6: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम उल कुरान रोजानो 5 मिनटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो फिर
7: अदा नौ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
8: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
7: न अदा
9: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
7: मुजे दुकान जी बेड हलंदी।
8: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
9: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
8: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
10: 0301-3336।
11: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीम कुरान रोजाना सुबह 8:53 सिर्फ

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क. हमारे साथ यहाँ पर मौजूद जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो. ओके जनाब, सो व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो आप लोगों तक पहुंचा जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. सो आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, खूबसूरती आप लोगों को मिलती जाएगी. बिल्कुल जनाब, अगर आप खूबसूरत बनना चाहते हैं तो आप जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती को ना सिर्फ बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स हैं बल्कि आप लोगों की खूबसूरती में जो है ना वो मजीद इजाफा भी लाएंगे और आप लोगों की खूबसूरती की हिफाजत भी करेंगे. तो इस तरह के प्रोडक्ट जो है ना वो आप लोगों को कम ही मार्केट में नजर आएंगे, जिससे आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ साथ आप लोगों की खूबसूरती का ख्याल भी रख रहे हैं. ओके जनाब, सो हम यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं कि जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं, जितने पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जब व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स का जिक्र आता है तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, तो उन्हीं तरह से यहाँ पर आप लोगों को ये चीज बताई जाएगी कि जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास जो है व्हाइट एज ब्यूटी सोप मौजूद है. क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि भाई हम क्रीमें नहीं लगा पाते हैं, तो अगर आप क्रीमें नहीं लगा पाते हैं तो आपके लिए मजीद और बहुत सारी ऑप्शन है, जैसे कि भाई व्हाइट एज का सोप मौजूद है, व्हाइट एज का साबुन है जो कि एवोकाडो एलोवेरा से तैयार शुदा है. ये तो भाई आप लोगों की डेली बेसिस लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी

करें वाइट एश ब्यूटी क्रीम की, तो वाइट एश ब्यूटी क्रीम जो है ये आप लोगों की खूबसूरती को जो है ना वो हमेशा बरकरार रखने वाली क्रीम है, आपकी खूबसूरती को हमेशा जो है ना वो निखारने वाली क्रीम है, आपकी स्किन को फेयर बनाती है, फ्रेश बनाती है, आपके चेहरे को जो है ना हर साइड इफेक्ट से पाक रखती है, क्योंकि इसके अंदर भी एवोकाडो और एलोवेरा मौजूद है, दोनों चीजें आपके चेहरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तो आप ट्राई करके देखिएगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें गर्मियों में लगाने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, तो गर्मियों में लगाने वाला प्रोडक्ट है जनाब व्हाइट एज की लवली क्रीम, जो कि रेडिएंट अल्ट्रा विटामिन्स के साथ तैयारशुदा होने वाली क्रीम है। इसके अंदर 30 विटामिन्स के कैप्सूल ऐड किए गए हैं, जो कि आप लोगों की खूबसूरती को बहुत अच्छे से जो है ना वो बढ़ाने का काम करेंगे। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत ही अच्छे अच्छे वाले विटामिन्स शामिल है, जैसे कि विटामिन B3 मौजूद है, विटामिन ई मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है, विटामिन डी मौजूद है जनाब। विटामिन डी के साथ साथ जो है ना इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है, यानी कि कुल मिलाकर आप लोगों की खूबसूरती का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आपकी खूबसूरती का ख्याल रखा जाए, तो थोड़ा सा आप भी अपना ख्याल रखें और आप भी इस्तेमाल करें जनाब व्हाइट एज के प्रोडक्ट, कि आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाएंगे और आप लोगों को हमेशा के लिए हसीन बना देंगे। अच्छा, लगाने के तरीकेकार अगर आप नहीं जानते लगाने के तरीकेकार क्या होंगे, तो लगाने के तरीकेकार वही सेम है जनाब, इनमें कोई भी आप लोगों को इस तरह का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो कि आप लोगों को लगे कि भाई ये प्रोडक्ट हम लगाएंगे तो इसके तरीकेकार थोड़े मुख्तलिफ है, ऐसा नहीं है। जब आप व्हाइट एज की ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो ये नाइट क्रीम है, रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा सोप का इस्तेमाल तो आप वैसे ही जैसे करते हैं, सुबह लगाएंगे, शाम को लगाएंगे, दोपहर को लगाएंगे, फेस वॉश भी बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। अगर व्हाइट एज की लवली क्रीम लगाना चाहते हैं तो जनाब उसका इस्तेमाल आप सकते हैं, जब आपका दिल करे तब कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फेयरनेस क्रीम है। अगर आप मेकअप की जगह पर इसे यूज करना चाहते हैं, यानी कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपका कोई काम है, कोई आप बाहर जाने वाले इंसान हैं, आप कॉलेज गर्ल हैं, पढ़ने वाले हैं, होती हैं, या सपोर्ट होता है, ये हमें दिखाता है कि आप लोगों को वाकई हमारे प्रोग्राम से मोहब्बत है। तो प्रोग्राम से मोहब्बत कीजिए और साथ साथ जो है ना व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट से भी मोहब्बत कीजिए, और इसके अलावा इस्तेमाल करते रहिए ताकि आपकी खूबसूरती में इजाफा और लोग आपसे भी मोहब्बत करें। ठीक है, समझ और यहाँ पर जो है गाना लगाते हैं ये वाला गाना सुन के बहुत ही खूबसूरत गाना है, ये रिमिक्स वर्जन में गाना है, और साथ साथ मेरे ख्याल में कमेंट्स आप लोगों के काफी सारे ऊपर भी चले गए, लेकिन कोई बात नहीं,

बाहर जाने वाले इंसान हैं, आप कॉलेज गर्ल हैं, पढ़ने वाले हैं, होती हैं, ये आप लोगों का सपोर्ट होता है, ये हमें दिखाता है कि आप लोगों को वाकई हमारे प्रोग्राम से मोहब्बत है। तो प्रोग्राम से मोहब्बत कीजिए और साथ साथ जो है ना वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट से भी मोहब्बत कीजिए और इसके अलावा इस्तेमाल करते रहिए ताकि आपकी खूबसूरती में इजाफा और लोग आपसे भी मोहब्बत करें, ठीक है, समझ रहे हैं। और यहाँ पर जो है गाना लगाते हैं, ये वाला गाना सुनेंगे, बहुत ही खूबसूरत गाना है, ये रीमेक्स वर्जन में गाना है। और साथ साथ मेरे ख्याल में कॉमेंट्स आप लोगों के काफी सारे ऊपर भी चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा गया। और कहती शो लाइव आपको क्या लग रहा है। और उसके अलावा जी आप पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए ताकि बहुत ज्यादा वाली ऑडियंस आ जाए हमारी पोस्ट पर और लोगों को ये ना लगे कि भाई पोस्ट जो है वो लाइव नहीं है, क्योंकि जब ऐसा लगता है आप लोगों को थोड़ा सा थोड़ी सी रश होती ना पोस्ट पर, तब आपको ये लगता है, मुझे लगता है, तो रश बढ़ाइए। और बताइए अभी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो। मुनव्वर अली कहते हैं मुझे लगता है आप नाराज हैं मुझे, इसलिए मुझे आप शामिल नहीं करती हैं शो में। नहीं, आपने जब जब कमेंट किया तब तब आपका कमेंट मैंने शामिल कर दिया प्रोग्राम में, वैसे नाराजगी आखिर क्यों की जाएगी आपसे। और चाचा खाले जुड़े जो कहते हैं कि जिंदगी उस वक्त पुरसकून हो जाती है जब इंसान हर दुख और हर आजमाइश अल्लाह आजमाइश पर अल्लाह के लिए सब्र करता है। बिल्कुल जी, ये सही बात है।

सिटी में या फिर करीबी जनरल स्टोर्स पर आपके पाड़े में हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे तमाम प्रोडक्ट्स जो कि आप लोगों को बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को नाम आना चाहिए प्रोडक्ट का, तो नाम भी याद कीजिए कौन सा प्रोडक्ट आपको बताया जा रहा है। व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि आप लोगों की खूबसूरती के लिए है, तो इस्तेमाल कीजिए, ऑल स्किन टाइप के लिए है, लड़के लड़कियां सभी लगा सकते हैं। अच्छा, अब्दुल रजाक जरदारी हमें सुन रहे हैं। अब्दुल रजाक जरदारी भाई, आपका बहुत शुक्रिया वेलकम के साथ साथ। अनवर भाई क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कर रहे हैं निंद्र।

कहते हैं कि सिद्रा आज ये वाला गाना तो लगाइएगा. बिल्कुल जी, गाने लगाएंगे आपके लिए. हिदायतुल्लाह कहते हैं कि पूरे ABC के अंदर शायद Z तक होगी इस ग्री में. अच्छा अच्छा, मैं अब बात समझ आई. नहीं, जो 30 कैप्सूल लेना तो हाँ शायद. कैसे सोच लेते हैं आप. चलें फिर, आपकी ही भलाई है, इसके अंदर आप इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. ठीक है जी. और निधि कहती है कि आए हाय, पता नहीं. और मकसूद अली जूनी जो हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम. मैं ठीक है, तां बुधाई किया है मकसूद. हाँ जी, काफी टाइम का पूरी तमाशा जी प्रोग्राम जो हिस्सों बने आए हो, काफी गुम थी वाया हुआ. अच्छा, असा सिंधियन जी ने हिकड़ी गाल या भी हुंदी आ, त अगर असा नी तबीयत खराब थी वने ने कोई असा का पुछना ते छा थियो, असा बदले में की जरूर चंदा अल्लाह छा थियो आई. अल्लाह छा तू थी, अल्लाह छा थियो, यो मतलब असा जो परमानेंट हुंदो आ. सो चाहे खबर हुंदी भी आहे, असा जानीदा भी हो त असा के छाए, पर कोई भी अगले मानो के जरूर चंदा त अल्लाह छा तू थी, अल्लाह छा थियो आ.

0: ओके जहाँ आप सब प्रोग्राम में ज्वाइन करते जाइए और बताइए अभी हमारे साथ मौजूद है लगा रहे नहीं लगा रहे वाइट डिश के प्रोडक्ट्स ये भी बताते जाइए। और यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा हम न्यूज ब्रेक की जाने जाएंगे उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आएंगे। सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। आप सुन रहे हैं वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी नजर आई
1: It's 2 p.m. This line check is brought to you by
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
4: साख बहतर थी आहे ईरान अमरीका ऐं नारजा मुल्क पाकिस्तान ते एतमाद कर रहा आहिनि। चटादार अमन हासिल करणु आसान नाहे हूंदो लेकिन हालतुनि में सबुर ऐं मुस्तक़िल मिज़ाजी सां अॻिते वधणु ज़रूरी आहे। सदर ट्रंप पाकिस्तान चवण ते प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकियो। सदर ट्रंप हिन वक़्तु बि ईरान मसइले जो हल सफ़ारतकारी ज़रिए चाहे थो। अमरीकी परडे॒ही वज़ीर मार्को रोबियो चयो आहे त पाकिस्तान चयो

0: त प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकण सां मुआहिदा जा इम्कान मौजूद आहिनि। तेहरान में फैसला केर कर रहियो आहे, मुजहारा मौजूद आहिनि। पाकिस्तानी सालसी ज़रिए अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। तेहरान अमरीकी तजवीज़ुनि ते जवाब ॾेई चुको आहे। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त अमन हुरमत बाबति ईरान जा ओमान ऐं ॿियनि सां राब्ता जारी आहिनि। यू ए ई समेत खिते में मौजूद कंहिं मुल्क सां दुश्मनी नाहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह। जहां उम्मीद
3: के दिए जलते हैं, रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
4: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 02424601000।
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह, वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे, मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हज़रात से कि इन लम्हात।
6: दिस प्रोग्राम इज़ ब्रॉट टू यू बाय।
7: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नस्लन ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
8: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 03005569।

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हाँ अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर, मुख्य बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहराब और मादली और जनाब लाड़काना की लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं. व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. सो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो आप जान चुके हैं कि भाई आप लोगों की खूबसूरती के लिए कितने ज्यादा जरूरी है. तो बिल्कुल वैसे यहाँ पर आप लोगों के साथ हम जरा शेयर करेंगे आप लोगों के साथ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी, ताकि आप लोगों को प्रॉपर पता होना चाहिए कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को किस तरह रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आप लोगों की खूबसूरती के लिए है और ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए है. और जनाब फुल जो है ना ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयारशुदा होने वाला प्रोडक्ट है जो कि आप लोगों को रिजल्ट देने वाला है सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है जनाब विटामिन बीड्स और विटामिन बीड्स जो है ना वो बहुत पावरफुल होते हैं लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और साथ साथ सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे नहीं बल्कि आपकी खूबसूरती को मेंटेन भी रखें, ताकि आप लोगों को प्रॉपर पता होना चाहिए कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को किस तरह रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आप लोगों की खूबसूरती के लिए है और ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए है. जनाब फुल जो है ना ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयारशुदा होने वाला प्रोडक्ट है जो कि आप लोगों को रिजल्ट देने वाला है सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है जनाब विटामिन ई बीड्स और विटामिन ई बीड्स जो है ना वो बहुत पावरफुल होते हैं लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और साथ साथ सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे नहीं बल्कि आपकी खूबसूरती को मेंटेन भी रखेंगे. और जनाब सिर्फ 2 दिनों में वाजे नतायज के लिए आप डी स्किन व्हाइटनिंग क्रीम जो है ना ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ये नाइट क्रीम है तो जनाब इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे. जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करने से पहले आप अपना फेस वॉश कीजिएगा डी स्किन फेस वॉश से. डी स्किन फेस वॉश जो है ये भी आप लोगों को इजीली कहीं से भी मिल जाएगा. तो डी स्किन फेस वॉश जो है ना वो आप अप्लाई कीजिए अपना चेहरा अच्छे से वॉश कीजिए ना अपनी डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई करनी है. अप्लाई करने के बाद अरे होते हैं तो जब भी आप ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई ब्यूटी क्रीम लगाते हैं तो वो प्रॉपर

अपने पूरे फेस पर लगाया करें, गर्दन पर लगाया करें, हाथों पे लगा पर भी लगा। तो अगर आप जो है ना ये सोच रहे हैं कि कोई डॉक्टर से तजदीदशुदा वाली क्रीम है, ब्यूटी क्रीम है, तो आप उसे सिर्फ अपने चेहरे के एक्ने को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये बिल्कुल है कि आप जब अपने पूरे चेहरे पर लगाएंगे तो आपके चेहरे के जो एक्ने वो खत्म हो जाएंगे, या फिर आपके चेहरे पर जितने मसाले उनमें जो है ना वो कमी हो जाएगी। लेकिन ये बात भी है कि आप अगर ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छे से किया करें। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर विटामिन ई बीट्स मौजूद है, का जो ये फेस वॉश है ना, ये हाइलूरोनिक एसिड है जनाब, सीरम भी इसके अंदर मौजूद है, ये बहुत ही शानदार क्वालिटी से तैयार शुदा है, आपकी खूबसूरती को ना सिर्फ बढ़ाता है बल्कि आपके चेहरे की स्किन को जो है ना वो मौजूद है, आपके चेहरे की स्किन जो है अगर डिहाइड्रेट रहती है आपके चेहरे की स्किन।

ओके जी, सो कश साथ साथ हूँ पूरे 3 बजे तक. शमन का गाना लगाइएगा. बिल्कुल जी, शमन का गाना आप सुन रही हैं. पूरे 3 बजे तक मैं भी आपके साथ रहूंगी. और बेबस जरदारी बलोच हमारे साथ है. मोरों से कहते हैं कि मुस्कुराहटों के शहर से आया है कोई, गुलाबों के फूलों से बना है कोई, तेरी गुफ्तगू में मेरी गुफ्तगू में के बाद शायद आपका मैसेज में से काट हो चुका है मेरे भाई. सो बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का. और ये है जी, वालेकुम अस्सलाम बाजी. कुछ बाजी, मेरी स्किन पर बहुत सारे काले निशान हैं. प्लीज मुझे बताएं मैं कौन सी क्रीम यूज करूं जो मेरी स्किन को खराब भी ना करे. अच्छा, बिल्कुल आपने बहुत

होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपकी स्किन जो है वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन के लिए है। आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, और साथ में आप डी स्किन का फेस वॉश भी ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। साथ हमारे साथी जी वालेकुम अस्सलाम सिद्रा मुस्कान किड़ा हाल है तवाजा खुश आयो सफा मजे में प्रोग्राम अडी शौक सा बुदू पया अदी आई टेस्ट क्रीम असा वठी आया आयो अदी सॉन्ग जरूर ए लाजमी प्ले कर जो सजादुल्ला जमाली अली हैदर जमाली अली गुल जमाली विलेजर रईस मोहम्मद हसन जमाली शफी आबाद नवाब शाह से मरसद माचो। अच्छा भाजे का तमा गाने जी फरमाइश कया बिल्कुल तमा जो गानो मो डाउनलोड करी छड़ियो आए हलाइण जी कोशिश कंदा गोठ मोहम्मद तैयब थे बुक हबीबुल्ला थे बु हमारे साथ के तमा जो शो वी नाइस आ है सलाम तमा के वालेकुम अस्सलाम भात तमा के जी खुशबू अच्छा चाचा खाली तम हां फौजिया तुमरो जे गाने जी फरमाइश कई या बिल्कुल तमा जी फरमाइश पूरी कंदा सी मोहब्बत हूँ तमाम भी प्रोग्राम बुधो पया और कहते हैं प्लीज गानों लिखवा तमा चलो ठीक है ठीक है। कश्यप कहती हैं आप ही आपका शो आज ठीक से नहीं चल रहा फ्रॉम सकरन सिटी में आपकी आवाज कट कट के आ रही है और ठीक करवा दे। हाँ शायद थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा तो अभी तक तो मुझे यहाँ पर किसी ने मैसेज करके बोला नहीं है कि आपके यहाँ से मसला है तो आप जरा ठीक करें, लेकिन लगता है कि वो वहीं आपके स्टेशन पर जो है ना उनका थोड़ा सा मसला। अच्छा

आइटम आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो खान हारून संदीलो हैं. रऊफ मक्सी का गाना सुनाएं. बिल्कुल जी, आपको गाना सुनाएंगे. और ये प्यारी बाजी माँ सोच पयो ना इधर ते पांच जे प्यारन दोस्तन के केड़ो गिफ्टेड जे पर हाने मुखे समझ में अची वई आ त हनन के वाइट एश क्रीम गिफ्ट कंदस. वाह वाह वाह वाह. डी स्किन क्रीम भी गिफ्ट कंदस. वाह वाह वाह वाह. इमरान अली बिरोई हमारे साथ मौजूद हैं जी. थैंक यू सो मच इमरान भाई, आपने बहुत अच्छी गिफ्ट जो ना वो सिलेक्ट करी है. और आप यकीन जाने जब आप ये गिफ्ट अपने दोस्तों को देंगे ना तो आपके दोस्त बड़े खुश हो जाएंगे. तो अपने दोस्तों को जो है ना वो इस तरह के तोहफे दें जो वो फील करेंगे भाई अगले इंसान को हमारी खूबसूरती का ख्याल. ओके जी, इतना प्यारा गाना लगाया आप लोगों के लिए और गाना आप एंजॉय करेंगे. और इसी के साथ साथ जो है ना प्रोग्राम में आपका हमारा साथ पूरी पूरी 3 बजे तक का है. तो गाना एंजॉय कीजिए और गाने के बाद हम जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने में जाने लगे हैं. तो एंजॉय करते रहिए, हमारा साथ दीजिए और पूरी पूरी 3 बजे तक मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ. तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स. एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए.

0: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर चढ़ प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: जदें मां पंहिंजो ख्याल रखंदी आहे त सिहत नस्लन ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
4: आमीन नाज़रीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन है। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो खतरे आप जरूर पिलाइएगा।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
6: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383-5769-0300-33-8556-9।
8: अस्सलाम वालेकुम अदा।
9: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
8: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
9: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
8: न अदा?
10: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
8: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
9: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
8: अदा के मुझे एड्रेस तो बता।
10: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
9: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
11: 0301-399-2836।
12: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने कम वाले बच्चों को दो कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 8:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
6: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इनमें मौजूद विटामिन ई बी

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहर और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ. व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी, ताकि आप लोगों की खूबसूरती जो ना वो बढ़ती जाए, खूबसूरती ही खूबसूरती हो और आप लोग जो है वो हसीन ही हसीन बनते जाए. ओके जी, सो यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को खूबसूरती कैसे मिलती है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की खूबसूरती में दो रातों के इस्तेमाल के बाद ही जो है ना वाजे फर्क नजर आना स्टार्ट हो जाएगा. जब दो रातें आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को ऐसा फील होता है कि वाकई भाई मजेदार तो प्रोडक्ट्स हैं. इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन से तैयार शुदा है और साथ साथ इसके अंदर विटामिन ई बीड्स भी मौजूद है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आप लोगों को डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है जो कि भाई सीरम के साथ साथ तैयार शुदा है. इसके अंदर भी बहुत सारी मजे मजे की चीजें ऐड की गई हैं ताकि आप लोगों की स्किन मॉइस्चराइज रहे, स्मूथ रहे, क्लियर रहे और फ्रेश रहे. तो बिल्कुल आप इस्तेमाल करके देखेंगे जी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है, लड़के लड़कियां सभी ट्राई करेंगे. ओके, इसी के साथ साथ हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में. तो जो लोगों ने अभी अभी सुना है स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्ट

रिगार्डिंग से लेकर मैसेज मौजूद है। उन तमाम तो लोगों को वेलकम इन खुश आमदी कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बत तो समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद हैं, काइंडली पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए ताकि हमें पता चले कि आप लोग हमारे साथ फेसबुक पर भी मौजूद हैं। और साथ साथ फेसबुक पर देखा जाए तो हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे लोग मौजूद हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे लोगों में आपके मैसेजेस जी तो हम जरा

तव्हां मैसेज कोन ॿुधी सघिया आहिनि ऐं पैनल ते त अॼु मां तकरीबन खोड़ मैसेजेस जल्दी जल्दी पढ़ी छॾिया. आंखों आंखों का मसला सॉन्ग सुना और हाँ वो गाना वैसे काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि ये वाला गाना हम सुनेंगे. वैसे तो हमने सुन सुन कर जो है ना वो बड़ा पका दिया इस गाने ने हमें, लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में चला लेंगे. ठीक है जी, और ये गाना है, गाना नहीं लगाती है तो आज ये उनका गाना भी हम सुन लेते हैं.

ओके जी, तो बहुत ही प्यारा गाना यहाँ पर हमने सुना। एक और गाना हमारी लिस्ट में है, तो जरा हम ये वाला गाना भी सुन लेते हैं। ये जी बहुत ही प्यारा गाना है, वैसे इस गाने का टाइटल मजबूर है, ये तो हम निदा के नाम जो है ना इस गाने को करेंगे। और साथ साथ हमारे साथ लुबी भी मौजूद है, लुबी ने मैसेज किया है। वालेकुम अस्सलाम है ठीका, आप बताएं लुबी आप कैसी हैं। कहती हैं कि गदगद आए हां तमाम बेहतरीन छो हली रहो आहे, मुझे खास सलाम मुझे प्यारी दोस्त जियाली अबासी ऐ नदली के जो। ओके जी ओके।

वैसे यार सच में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा. मुझे लग रहा है मैं सोई हुई हूँ.

अरे गाना हमेशा जो होता है ना वही वाइब में आता है और वही ट्रेंड में आता है जिसके ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी की जाती है. तो इस गाने के साथ साथ भी स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी कंट्रोवर्सी की गई जब भी इस गाने को बड़ी हाइप मिली और ये गाना वाकई इतना ट्रेंडिंग में चला गया. सुन सुनकर मेरे तो कान ही पक गए. अच्छा तो आज हाँ काफी सारे लोगों के कमेंट्स हैं या फिर मैसेजेस हैं वो रह चुके होंगे तो मैं जरा माजरत कर देती हूँ आप लोगों से. अली अकबर बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद जमान भाई बहुत शुक्रिया आपने कमेंट किया है. और ये दर्दे दिल कहती हैं कि चंदा मीरपुर खास में वाइट एश एंड डी स्किन क्रीम नहीं मिल रही है. पूरा मीरपुर खास घूमी पर नहीं मिला. अरे भाई ये तो बहुत बुरी बात है. चले मीरपुर खास में अवेलेबल कराते हैं. और उसके अलावा सनावला बिरोही भाई भी हमारे साथ हैं. आपका शो रेडियो पर सुनता हूँ. बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू ऐसे ही सुना कर ऐसे ही मोहब्बतें दिखाया कर.

हाँ जी, मेरी गल सुन एथे बे, लेकिन हम यहाँ पर अब खिसकने की सोच रहे हैं। ये वाला गाना होगा हमारे प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक, और ये फौजिया सुमरो की आवाज में गाना होने वाला है। को त एड़ो हुजे डाडू वीआईपी गानो मु बुदो तो मुखे इलाही सुठो लगो। आए थोड़ो सैड लेकिन गानो भलो आए सुन गाने के बुदना से आए गाने सा गरो जेको तमा का इजाजत भी वठना से कुछ मैसेज कमेंट पड़ी वठो था दिसा त पैनल ते खोर मैसेज जमा थी चुका है। एडम ता जो मोहब्बतों तमा इडा सारा मैसेज करे से जाए गोठ मीर शेर खान टालपुर खान अलारनो टालपुर भाई हमारे साथ ही आपका शुभरी नाय से बहुत शुक्रिया। चाचा खालिद आपका भी बहुत शुक्रिया, इतने सारे मैसेजेस कर दिए हैं। और ये है जी दोस्तन सा गड बाजी असा बोतल पियों था लाड़कानो शाही बाजार में इमरान अली बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है। इमरान भाई तुम मोहब्बतू आए बोतल पियो बाबा प्रोग्राम भी बुधो।

ओके जी, सो वरीन सलाम मुझे मुलाकात सिखाए तव्हां सां सुभाणे वारे प्रोग्राम में थियण वारी आहे 1 बजे खां 3 बजे ताईं तव्हांजो सॼो साथ रहंदो आहे बाबा प्रोग्राम में. पंहिंजो इलाही सॼो ख़्यालु रखंदा ऐं किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां. पंहिंजा मैसेजेस रहिजी विया आहिनि, ख़ासि करे हिनजा गाना रहिजी विया आहिनि, सभिनी खां माज़रत कयूं पई. सो मोकिलाणी नाहे बाबू, सन सलामत सां सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर.

0: This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN.
3: नवां टैक्स लॻाइण जी बि तजवीज़. ज़रियुनि मूजिबि IMF मिशन जो पाकिस्तानी अख़्तियारनि सां बजट जे ॻाल्हियुनि जी आख़िरी ॾींहुं आहे. IMF सेल्स टैक्स जी छूट ख़तम करण जो मुतालबो कंदे शरह 22.5 8% खां घटाए 18% करण जी तजवीज़ ॾिनी आहे. इन्फोर्समेंट जे मद में 2778 रुपया रखण जो बि चयो वियो आहे. अमरीका ईरान में जंग ॿीहर शुरू थियण जा ख़र्चा वधी विया. अमरीका जो बारूद ऐं हथियारनि सां भरियल जहाज़ इसराइल मोकिलण जो सिलसिलो तेज़ करे छॾियो. इसराइली मीडिया चयो आहे त अमरीका ईरान ते हमलनि जी तयारी करे रहियो आहे. हथियारनि सां भरियल कार्गो जहाज़ इसराइल पहुची रहिया आहिनि. पाकिस्तान इनकलाब ते अमरीका खे ॿीहर ग़लती वरजाइण ते फ़ैसिलातो जवाब ॾियण जी धमकी. तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फसल शिकारची चयो आहे त ईरान ख़िलाफ़ नई जहाज़ जो जवाब फ़ैसिलातो ऐं तबाह कंदड़ हूंदो. सदर ट्रंप पाकिस्तान जे चवण ते प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकियो. सदर ट्रंप हिन वक़्त बि ईरान मसइले जो हल सफारतकारी ज़रिए चाहे थो. अमरीकी परॾेही वज़ीर मार्को रोबियो चयो आहे त पाकिस्तान चयो हो त प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकण सां

कुकीन क्वीन अनमोल और पिंकी केतिरा भेरा मुल्क खां ॿाहिरि वही पुलिस तफ़सीलात करे वरिता। पिंकी 25 दिसंबर 2018 ते बाकू वई हुई। पिंकी जो मुड़ सगुण इंस्पेक्टर राणा अकरम भी ॿ भेरा बाकू वियो हो। पुलिस मूजिबि राणा अकरम पहिरियों भेरो पिंकी सां साथी किरण खे पकड़ियो हो। मुबैना तौर ते 5 करोड़ ऐं 2 गाॾियूं। रादर भरिसां जवाबदार सोट नारी खे कारे इल्ज़ाम हेठि गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। गोट नारी में अकबर चांडियो कारे इल्ज़ाम हेठि 20 सालनि जी सोमल चांडियो खे क़तल करे छॾियो। इतलाउ ते पुलिस वाकिफ़े हंधि पहुची नारी जो लाश इस्पताल मुंतकिल करे छॾियो। नारी जो भाउ ऐं मामो गिरफ़्तार। वारा भरिसां पुराणे तकरार तां औरत समेत 2 ॼणा क़तल। हथियारबंदनि अदालत वेंदड़ ॻोठाणे शान चांडियो खे क़तल कयो। पलांद में मक़तूल जे वारसनि जो इल्ज़ाम हेठि आयल धुर जे घरनि ते हमिलो। हिकु औरत मारिजी वई, ॿी ज़ख़्मी। मास्तर जे लाड़े वटि हथियारबंदनि फायरिंग करे शान चांडियो खे क़तल कयो। मक़तूल जी धुर पलांद में इल्ज़ाम हेठि आयल धुर जे ॻोठ गाज़ी ख़ान मर्कज़ ते हमिलो कयो। औरत बम्बी चांडियो मारिजी वई। पुलिस मुताबिक़ धुरनि में पुराणे तकरार तां वाक़ियो पेश आयो आहे। वधीक जांच जारी आहे। सिंधड़ी भरिसां पसंद प्रणेता नारीअ जे वारसनि पारां पलान में अगवा थियल टिनि नारियुनि खे पुलिस बाज़ियाब कराए न सघी। ॻोठ हाजी अबूबकर जुण जो वासण 16 सालनि जी रिहाना, 18 वरनि जी आसिया ऐं 10 वरनि जी नाज़िया खे पुलिस बाज़ियाब कराइण में नाकाम। पुलिस जे जवाबदारनि जे घरनि ते चढ़ाई, 3 ॼणा गिरफ़्तार। बाक़ी जो केस दाख़िल न थियो। कोडी जी भरिसां हथियारबंदनि हथियारनि जे ज़ोर ते फुर। मज़म्मत ते नौजवान क़तल। वारसनि जो लाश रखी धरनो। मिसरी शाह स्टाफ वटि फुर दौरान मज़म्मती हथियारबंदनि गुलाम मुस्तफ़ा भुगटी खे क़तल कयो। वाकिए बाद मक़तूल जे वारसनि ऐं भुगटी वादी जो लाश रखी पुराणे क़ौमी शाहराह ते धरनो हयो। जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। कड़ू मोहम्मद खान में मनशाद केस में गिरफ़्तार। अॻूणे बरतरफ़ सिविल जज ज़ाहिद हुसैन मुगेरी समेत 4 ॼणनि जी ज़मानत मंज़ूर। बरतरफ़ सिविल जज ज़ाहिद हुसैन मुगेरी, साजिद लाशारी, बिलावल सुमरो, मुनीर मल्हा जी ज़मानत मंज़ूर कई वई। वकील चयो त अॻूणे सिविल जज कराची में बरतरफ़ी बाबति इंक्वायरी हलंदड़ आहे। पुलिस बिना कंहिं सबबु मनशाद जे केस

0: खेस गिरफ्तार कर जवाबदार जाहिर किया है। पुलिस कुछ दिन अग अगुणे जज समेत बिन के मनचाज केस में गिरफ्तार किया हो। सकरण में एसयूपी पारा वधण बदमी खिलाफ रैली और धरणों काकुरन मीडिया सेंटर चौक का रैली कड़ी मुख्तियार ऑफिस के गेट अगर धरणो हयों मुजाहरीन पारा बदमनी खिलाफ नारेबाजी कई अमन बहाल करण जो मुतालबो अगवण चो तो पुलिस अमन अमान बहाल करण में नाकाम थी रही है। सिंध में पानी यादगार सरापा एजाज बनल पिरोसण में अली भर में मौजाई चाक पिरोसण मानल के पुछली में 25 साल का पानी न पहुंचने कर आबादगार एजाज खेपरो भरसा लाल खान शाक के पुछली में पानी की कोट सबब फसल तबाह थे लगा आबादगार पानी कोट सबब फसल ना पोखे सकूँ आपासी अमलो मुंड के जिम्मेदार के रिश्वत एवज पानी विक्रो कर रो है करप्शन नोटिस वी पुछली में पानी पहुंचाया वे। न्यू सैदाबाद वेझो छह ढीह अग रोड़ी कैनाल में मुड़ी वेल नौजवान न मिलो वाटसन जो एजाज जेरपीर मोरी वट गोड अवल छछर वासी नौजवान महबूब अली उन्नड़ रोड़ी कैनाल में मुड़ी पे हो वाटसन एजाज कंतजामिया नौजवान के लाश की गोला में सहकार न पी करे। अमरीकी रियासत अडाऊ में मशकन दौरान अमरीकी नेवी का ब जहाज टकराज पायलट्स पान के इंजेक्ट कर बचाए वरतो बे जहाज मुकम्मल तौर से तबाह थी वह।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर वक्त।
2: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेहरापुर। असां वटि जॻहि जूं ॾियारियूं जॻहि

0: वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर, राब्ते जे लाए 0320180003।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई
3: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा? दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: हेल्थ में बच्चों की शोभा सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरखास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो के 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, स्किन का राज, अफजल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सां कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो लाइ 0301-9196-851।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569-0300-00-3।

मैंगो का फल काश्त करके ऑल वर्ल्ड को जो है वो हैरान कर दिया। यू नो वेरी वेल के फल का दरख्त हो या सब्जी का पेड़, तो एक ही किस्म का फल या एक ही किस्म की फसल देता है, मगर एक किसान ने नाकाबले यकीन तजर्बा करते हुए एक दरख्त से 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज काश्त करके दुनिया को हैरान कर दिया। और ये हैरत अंगेज कारनामा भारतीय जिला गुजरात के किसान ओका भाई भट्टी ने अंजाम दिया है, जिन्होंने गांव में एक ही आम के दरख्त पर 14 मुख्तलिफ इकसामों के आमों की फसल काश्त की। भट्टी ने ग्राफ्टिंग टेक्निक साइंसी तरीकों का इस्तेमाल करते हुए एक ही दरख्त पर मुख्तलिफ इकसाम के आम उगाए हैं और आमों के मौसम में ये दरख्त अलग अलग रंग शक्ल और जायके वाले आमों से भर जाता है, जिसे देखने के लिए ना सिर्फ आसपास के देहात बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी लोग पहुंच रहे हैं। ओका भाई भट्टी के मुताबिक इस दरख्त पर केसर, अमरपाली, लंगड़ा, बादामी, गुलाबी, रसबरी, जमादार, काला जमादार, हॉप्स और तोता परी समेत कई इकसाम के आम उगाए गए हैं। हर किस्म के आम का जायका, खुशबू, रंगत दूसरे आम से मुख्तलिफ है। हो गए ना आप भी हैरानी सुनने के बाद। मकामी अफराद के मुताबिक इनमें से बाज आमों की इकसाम जो है वो बेहद नायाब है, जो नवाबी दौर में काफी मशहूर हुआ करती थी। सनों के तजर्बे और तादाद तखलीके कार हैं, उनसे सब कुछ यकीनी है। सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही है शादी की रस्म के वे दुल्हन जो है ये सवाल क्या उससे अपनेगी, इसे

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88, इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह, वल्दे हजरत मौलाना सैयद हौसल मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से शांति हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा समझी। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। ये रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

होती नहीं, जब बंदा बोलता है कुदरत खामोश रहती है, जब बंदा खामोश हो जाता है तो कुदरत इंतकाम लेती है और उसका इंतकाम बहुत ही बुरा होता है। वंस अगेन अपने तमाम सामीन को वेलकम कहेंगे। और जनाब आपकी कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे हम यहाँ। हमने आज आपसे पूछा, जब आपको शदीद गुस्सा आता है तो क्या करते हैं आप? ठीक है जी, ये जानने के लिए आपकी कॉल्स आपके पैगामात को शामिल प्रोग्राम करेंगे। और मैसेज करने का तरीका भी अगेन रिपीट करती चलो, मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में लिखना है MP के एक स्पेस, देना है नाम और पैगाम, लिखकर रवाना।

0: तव्हां कीअं आहियो? सभु कोई पैगाम दे दें आप इस वक्त जो आपको सुन रहे हैं बहुत से लोग।
1: जी
0: अदा सबको कोई मैसेज देंगे आप?
1: मैसेज ये रेडियो सां जेके लिसनर आहिनि उहे तव्हां कोन भली मोहबत सां सुठी सलाह कंदा सां ॻाल्हाइनि ऐं जेको आहे वधे करे ॿियो माण्हू सां ॿिए सां मोहबत तव्हां कनि।
0: चले ठीकु आहे दादा, महिरबानी तव्हांजी, तव्हां असांखे ज्वाइन कयो। और जनाब आप हमें बता रहे जब आपको शदीद वाला गुस्सा आ जाता है तो आप क्या करते हैं? सच्ची सच्ची बताए ना, क्या करते हैं आप? नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, वेलकम कहते हैं, कौन बात कर रहा है?
2: बहुत मुश्किल से कॉल लगी आपको, एक हफ्ते से कॉल लगा रही मैं आपको।
0: मैं एक हफ्ते से छुट्टी पे थी, अच्छा मैं एक हफ्ते से छुट्टी पर थी, प्रोग्राम हो ही नहीं रहा था एक हफ्ते से, आज ही किया है।
2: ठीक हो आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। शबाना को जब गुस्सा आता है शदीद वाला, क्या करती है शबाना?
2: गुस्सा आता है जब शदीद वाला, गुस्से में सबसे ज्यादा नुकसान कर दिया।
0: ओह माय गॉड,
2: बर्तन तोड़ना, ये तोड़ना, वो तोड़ना।
0: अच्छा ये सब तोड़ फोड़ से वो मतलब कोई फायदा होता है?
2: फायदा नहीं होता, बाद में फिर दुख होता है।
0: ये बात मतलब एहसास हो जाता है।
2: कुछ टाइम पहले आपने मुझे गिफ्ट मिला था, मुझे किसी ने दिया था, मैंने उसे चाय पी दी, जैसे मुझे गुस्सा आया मैंने वो तोड़ा, मुझे पता चला वो गिफ्ट था, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने चलो
0: तो फिर इस आदत को चेंज करने की कोशिश करें, चीजें नहीं तोड़ा करें, जब्त किया करें।
2: कोशिश करेंगे, मगर यही तो सबसे पूछती हूँ गुस्सा खत्म करने के लिए क्या किया जाए।
0: मेरा तो मुफीद टोटका है जो आपको हैरानगी होगी, मैं जो है ना, मुझे गुस्सा जो अगर खुदा ना खास्ता खतरनाक वाला आता है ना, फिर मुझे वो बहुत गहरी खामोशी हो जाती है, बहुत गहरी चुप लग जाती है, तो मैं नहीं चाहती कि ऐसी खतरनाक खामोशी हो, लेकिन तोड़ फोड़ से बेहतर है आउज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम का वर्द किया करें आप, और अपने चले मैं दुआ करूंगी कि शबाना जो है, चले दुआ करेंगे आपके लिए कि शबाना ठंडी मिजाज की हो जाए और गुस्सा जो है शबाना छोड़ दें। थैंक यू शबाना, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब अब क्या ख्याल है, कॉल्स लूं आपकी? एक सेकंड, टेक्स्ट जो है आपके, अच्छा गोट मोहम्मद तैयब थेबो से हबीबुल्ला थेबो, सॉन्ग सुनाओ, शमन का सॉन्ग सुनाऊंगी आज मैं एक, हाँ लेकिन ये वाला नहीं जो आपने कहा है, दूसरा एक सॉन्ग है। थैंक यू आपका शुक्रिया। मोहसिन अली रोड़ी से सिस्टर सलाम, वालेकुम असलाम से भाई, बेस्ट प्रोग्राम और उर्दू सॉन्ग चले जी। ये सॉन्ग मैंने क्यू शीट में रख दिया है, ये 4 बजे जो हमारा न्यूज ब्रेक होगा उसके बाद हम जरूर प्ले करेंगे, बहुत शुक्रिया। शहदादपुर से मीर अलाडिनो खान तालपुर, आपके शो वेरी नाइस, सलाम आपको। वालेकुम असलाम अदा, सेम टू यू, तव्हांजी महिरबानी, तव्हां ज्वाइन कयो असांखे, थैंक यू। चले जी एक और कॉल शाम ले प्रोग्राम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम,
0: वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा है?
3: निदा बात कर रही हूँ। गुल
0: निदा, शदीद गुस्से में क्या करती है निदा?
3: पहले तो मैंने गिलास तोड़ा था,
0: ओह माय गॉड,
3: पहली बार गुस्सा।
0: अच्छा फिर
3: उसके बाद अम्मी ने ऐसी गिलास लगाई कि फिर सब्र आ गया।
0: ये जी अम्मी, अम्मी खुश रहो, अम्मी की क्लास मैं अच्छे से अंडरस्टैंड करती हूँ, मेरी भी लगती है, मेरा ज्यादातर टाइम मेरी अम्मा के साथ ही गुजरता है, अम्मा की जो ठंडी वाली इज्जत अफजाई होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है। निदा गुड नाइट, आपको बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब ब्रेक टाइम हो रहा है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हमारी जो माएँ है ना, अच्छा ये मजे की बात है, जब तक अम्मा सुनाए नाना तो खाने भी हजम नहीं होते हैं औलाद के, ये बड़ा ही प्यार वाला माँ का और औलाद का जो रिश्ता होता है बेस्ट होता है। एनीवे जनाब, बातों के सिलसिले को यहाँ ब्रेक देते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक का पॉइंट अगेन हमारा फिर से साथ साथ।
4: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
5: General Rakhan diya hai.
6: Jee, nawa tax lagayan ji bit tajweez zaryan mujib IMF mission jo kaam Pakistani akhtiyaran sa budget te galan ji aj aakhri ni hai. IMF sales tax se chhoot khatam karan jo mutabiq avi adai ma ghata karan ji tajweez jamat mein 10 arab rupaya rakhan jo chaya ve wa hai.

अमरीका ईरान में जंग ॿीहर शुरू थियण जा ख़दशा वधी विया। अमरीका जो बारूद ऐं हथियारनि सां भरियल जहाज इसराइल मोकिलण जो सिलसिलो तेज़ करे छॾियो। इसराइली मीडिया चयो आहे त अमरीका ईरान ते हमलनि जी तयारी करे रहियो आहे। हथियारनि सां भरियल कार्गो जहाज इसराइल पहुची रहिया आहिनि। पाकिस्तान इनकलाब जी अमरीका खे ॿीहर ग़लती वरजाइण ते फैसलाइतो जवाब ॾियण जी धमकी। तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फज़ल शिकारची चयो आहे त ईरान ख़िलाफ़ नई जारियत जो जवाब फैसलाइतो ऐं तबाह कंदड़ हूंदो। सदर ट्रंप पाकिस्तान चवण ते प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकियो। सदर ट्रंप हिन वक़्त में ईरान मसइले जो हल सफारतकारी ज़रिए चाहे थो। अमरीकी परडेही वज़ीर मार्को रोबियो चयो आहे त पाकिस्तान चयो हो त प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकण सां मुआहिदे जा इम्कान मौजूद आहिनि। तेहरान में फैसला केरु करे रहियो। पाकिस्तानी सालसी ज़रिए अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। तेहरान अमरीकी तजवीज़नि ते जवाब ॾेई चुको आहे। यू ई समेत ख़ते में मौजूद कंहिं मुल्क सां दुश्मनी नाहे। ईरानी परडेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो आहे त ईरान यूरेनियम जे रचाउ बाबति पंहिंजे हक़ तां हथ न खणंदो, नई मामले ते कंहिं सां ॻाल्हियूं कंदो। ईरान जा जंग जे ख़ात्मे लाइ मुतालबा वाज़े आहिनि। यू ई खे कुझु महीननि जे वाक्यनि खां सबक सिखणु घुर्जे। अबनह हुर्मुज़ बाबति ईरान जा ओमान ऐं ॿियनि सां राब्ता जारी आहिनि।

नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो कतर के परडेही मामलन बाबत ममलकती वज़ीर से फोन से राबतो। इसहाक़ डार ए मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़े विच में इलाक़े सूरतहाल से गालियों इलाक़ाई चैलेंजेस के मुंह दियण लाइ गालियों सफारतकारी राबतन से जोर। कतरी वज़ीर की सूरतहाल में पाकिस्तान की तामीरी सफारती किरदार की वाखाण। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से न्यूअल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। न्यूअल चीफ वज़ीर आज़म के बेरिया के तैयारियों बाबत ब्रीफिंग दिनी।

0: ड्रोन हमले की मजम्मत इमारती हुकूमत अवाम से एक जो इजहार परडे वजारत मूजिब कें भी एटमी बिजली घर के निशान बढ़ाने आलमी कानून की संगीन भंजकड़ी है। सिविल एटमी इंफ्रास्ट्रक्चर जो तहफुज हर सूरत में थे घुर्जे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता।
4: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
5: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खा इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खा रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहराबपुर। वधिक राबते जे लाए 0300-3583-569-03000-3855।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: बक्तावरे तुंहिंजो मुड़ुसु हर वक़्तु कम सां लॻल हूंदो आहे, पोइ बि तव्हांजा हाल कोन था मटिजनि।
3: हा अदी शकीला, छा कयूं, मंज़ूर
2: राब टोका मशीन ऐं स्प्रे पंप हुयो जेको उन मुंहिंजे मुड़ुस खे ॾिनो वियो, जेको मुंहिंजो मुड़ुसु सालनि खां इस्तेमालु करे रहियो आहे। अकुल खां कमु वठ, अदा मंज़ूर खे चओ त पंहिंजे घर जो सोचे ऐं सोहराब टोका मशीन ऐं सोहराब स्प्रे पंप वठी अचे।
4: गुज़िरियल 60 सालनि खां पाकिस्तान में सोहराब टोका मशीन ऐं स्प्रे पंप पंहिंजे मयार, मज़बूती ऐं पाएदारीअ जे करे मशहूरु आहे, जेके रजिस्ट्रेशन नंबर 57194 तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खां रजिस्टर्ड आहिनि। सोहराब टोका मशीन सोहराब हैंड स्प्रे खां अलावा हाणे सोहराब बैटरी इंजन वारो स्प्रे पंप पिणु दस्तियाब आहे। सोहराब टोका मशीन सोहराब स्प्रे पंप पहलवान जे मोनोग्राम वारो पंहिंजे वेझे डीलर खां तलब करे।
5: शामीन नाज़रीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में औलाद के निगहबान वालिदैन है, पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
6: मरीजों का इलाज किया जाता है 24 घंटे, इमरजेंसी, जदीद लेबोरेटरीज, जदीद ऑपरेशन थिएटर, अल्ट्रासाउंड, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर्स, सर्जिकल और मेडिकल सहूलियत, मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस, इंसानियत की खिदमत हमारा मकसद। एड्रेस मोहम्मद उमर बुघियो ट्रस्ट हॉस्पिटल, मीरवा रोड, नज़्द डिस्ट्रिक्ट जेल, डिफेंस सिटी, मीरपुर खास। मजीद मालूम के लिए 03-41-34-29-82।
7: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
8: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
9: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची ए इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मशीन जे हथर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई

RSMS के लिए मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में MP के एक स्पेस अपना नाम और पैगाम लिखकर रवाना कीजिए 8881 पर।

0: जिंदगी की लहर जीएफ
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का एक ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88

क्योंकि गुस्से में अकल की जो सूझबूझ होती है इंसान वो खो देता है। अच्छा फातिमा कहती है गुल ना सुने दिल हमारी, हम भी कौन से इतने अच्छे हैं कि जो दिल की सुनते हैं। अच्छा फातिमा ये तो आतिफ का सॉन्ग है भाई, मेरे दिल की आवाज नहीं है ये। गुल चीजें तोड़कर अपना गुस्सा निकाल कर अम्मा का गुस्सा देखना पड़ता है गुल ज्यादातर बर्तनों पर। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली बैड हैबिट मेरी बिल्कुल किस लिए। और गुल मैंने सच्ची वाला आंसर दिया है, अगर इंसान भी बिला वजह गुस्सा दिलाए तो गुस्सा उतारो। उसे घर तक जरूर छोड़ के आती हूँ फातिमा, कोई फायदा ही नहीं है अपना टाइम वेस्ट करना वहां पर, जो बंदा एबिल ही ना हो उस बात के। हम जो है ना लोगों को बहुत अपने सर पे सवार रखते हैं, जो हमारे जो है बराबर बैठने लायक नहीं होते हम उन्हें सर पे रखते हैं सवार, तो फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो नजरअंदाज करना आई थिंक बेहतर होता है, अवॉइड कर दें फजूलियात को। अगर सामने वाला बदतमीज है तो हमने भी कोई बदतमीज बन के उसको आंसर देना लाजमी है। नहीं जी नहीं, आपने खामोशी से जो है किनारा कशी कर लेनी है, बदतमीज के साथ बदतमीज तो नहीं हुआ जाता ना। वेल जनाब प्रोग्राम में आपसे इजाजत लेने का भी वक्त है, जाते जाते आपसे यही कहूंगी तेरे इर्द गिर्द वो शोर था मेरी बात बीच में रह गई, ना मैं कह सका ना तू सुन सका, मेरी बात बीच में रह गई, मेरे दिल को दर्द से भर गया, मुझे बेयकीन सा कर गया, तेरा बात बात पे टोकना मेरी बात बीच में रह गई, तेरे शहर में मेरे हम सफर वो दुखों का जम में गफीर था, मुझे रास्ता ना मिल सका मेरी बात बीच में रह गई, वो जो ख्वाब थे मेरे सामने जो शराब थे मेरे सामने, मैं इन्हीं में ऐसे उलझ गया मेरी बात बीच में रह गई, अजब एक चुप सी लगी मुझे उसी एक पल के हिसार में, हुआ जिस घड़ी तेरा सामना मेरी बात बीच में रह गई, कहीं बेकनार थी ख्वाहिशें कहीं बेशुमार थी उलझने, कहीं आंसुओं का हजूम था मेरी बात बीच में रह गई, था शोर मेरी सदाओं का मेरी नीम शब की दुआओं का, हुआ मुल्तफित जो मेरा खुदा मेरी बात बीच में रह गई, तेरी खिड़कियों पे झुके हुए कई फूल थे हमें देखते, तेरी छत पे चांद ठहर गया मेरी बात बीच में रह गई, मेरी जिंदगी में जो लोग थे मेरे आस पास से उठ गए, मैं तो रह गया उन्हें रोकता मेरी बात बीच में रह गई, तेरी बेरहुई के हिसार में गमे जिंदगी के फिशार में मेरा सारा वक्त निकल गया मेरी बात बीच में रह गई, मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी जबां मेरी, सो हकीकतन भी वही हुआ मेरी बात बीच में रह गई, मेरी बात बीच में रह गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपसे जब हम होते हैं मुखातिब तो हम सब कह देते हैं, कोशिश होती है आपकी राय को भी अवलीन तरजीह दिया जाए। बंडल ऑफ थैंक्स टू ऑल लिसनर्स, आप भरपूर तरीके से हमारा साथ देते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मेरा और आपका साथ यहीं तक का, प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक आप सबके लिए, एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। नेक्स्ट प्रोग्राम यानी शब 8 बजे तक मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड इवनिंग।

0: इट्स 5 पीएम दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे
2: अमेरिका ईरान में जंग बीहर शुरू थियण जा खदशा वधी विया अमेरिका जो बारूद ऐं हथियारनि सां भरियल जहाज़ इसराइल मोकिलण जो सिलसिलो तेज़ करे छॾियो इसराइली मीडिया चयो आहे त अमेरिका ईरान ते हमलनि जी तयारी करे रहियो आहे हथियारनि सां भरियल कार्गो जहाज़ इसराइल पहुची रहिया आहिनि पासदार इनकलाब जे अमरीका खे बीहर ग़लती वठण ते फैसलाइतो जवाब ॾियणो तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फज़ल शिकारजी चयो आहे त ईरान ख़िलाफ़ नई जारीअ जो जवाब फैसलाइतो ऐं तबाह कंदड़ हूंदो सदर ट्रंप पाकिस्तान जे चवण ते प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकियो सदर ट्रंप हिन वक़्त बि ईरान मसले जो हल सिफारतकारी ज़रिए चाहे थो अमरीकी परडे॒ही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त पाकिस्तान चयो त प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकण सां वाइदे जा इम्कान मौजूद आहिनि तेहरान में फ़ैसला केरु करे रहियो आहे मुंजारा मौजूद आहिनि पाकिस्तानी सालिसी ज़रिए अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि तेहरान अमरीकी तजवीज़नि ते जवाब ॾेई चुको आहे यूएई समेत ख़िते में मौजूद कंहिं मुल्क सां दुश्मनी न आहे ईरानी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान यूरेनियम जे रचाउ बाबति पंहिंजे हक़ तां हथ न खणंदो नई मामले ते कंहिं सां ॻाल्हियूं कंदो ईरान जा जंग जे ख़ात्मे लाइ मुतालबा वाज़े आहिनि यूएई खे कुझु महीननि जे वाक़िअनि खां सबक सिखणु घुर्जे आबना हुर्मुज़ बाबति ईरान जा ओमान ऐं ॿियनि सां राब्ता जारी आहिनि

IMF जो पाकिस्तान का सेल्स टैक्स में हर किस्म की छूट खत्म करने जो मुतालबो 430 अरब रुपये जहाँ नवा टैक्स लगाने की भी तजवीज दई छी दरियन मुझे IMF एशन जो पाकिस्तान अख्तियार बजट से गालियन की अज आखिरी ढी है IMF सेल्स टैक्स से छूट खत्म करने जो मुतालबो कदे शराब 22.5-8% मां घटाए 9% करण की तजवीज दिनी है इन्फोर्समेंट की मत में भी 778 अरब रुपया रखण जो है सिंध असेंबली में घरेलू मुलाजमन के तहफ़ वो बिल यकराए से मंजूर बिल पार्लियामानी मामलों के वजीर पेश किया शजरी नामे में सवाल का जवाब दींदे तो सिंध सरकार जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से 500 का वधिक बसों मुख्तलिफ रूट्स से हली रही हैं आपाशी वजीर जाम खान शोरे बरसात सबब ईंदड़ बोर्ड के बू डण पानी के कुदरती वकरन का कब्जा हटाए रहा हूं घरू वजीर जाल हसन अंजार हैदराबाद और कराची में गुटको टही रो है कार्रवाई भी जारी है सुबह खुराक की रसद में रंडक बढ़ी न तो सके पंजाब हुकूमत केपी के कणक की फरामी में रंडक विझी रही है वफाक भी खामोश है केपी के वे वजीर सोहेल अफरीदी गवर्नर फैसल करीम कुंडी से गडियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे है केपी जो अवाम सभी का महंगो अटो खरीद कर रो है केपी वफाक के मदनियात बिजली और गैस दई रो है पंजाब लगातार आईन की बजट कोई अनमोल उठपिन की केतरा भेरा मुल्क का बाहर वही पुलिस तफसील हथ करे वरता पिंकी 25 दिसंबर 2018 हुई पिंकी जो मुड़स अगुणा इंस्पेक्टर राणा अक्रम भी बेरा बाकू वो हो पुलिस मूजिब राणा अक्रम पे भेरों पिंकी और संदस साथी किरण के पकड़ो हो मुबैना तौर 5 करोड़ और ब गाड़ियों वी बिन्नी के छे दिनों हो कुकीन क्वीन अनमोल और पिंकी जेल में कायम अदालत में पेश पुलिस के रिमांड की सदा अदालत फैसलो महफूज करे वरतो

0: राधण भरसां जवाबदार सोट नारी के कारण हणी कतल करे छॾियो। घोट नारी में अकबर चांडियो कारण सां मेट 20 सालनि जी सूमल चांडियो खे कतल करे छॾियो। इतलाह ते पुलिस वाक़िए वारे हंधि पहुची नारीअ जो लाश अस्पताल मुंतकिल करे छॾियो। नारी जो भाउ ऐं मामो गिरफ़्तार।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

0: मसला मदा छो परेशान आई
1: दुकान खोलियो तुम पर हले ही न तो छा कजे
0: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
0: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
0: रबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
4: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319 1557
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसा।

0: असांजो पाणी साफ़ न आहे, तंहिंजे करे त असां बीमार था थियूं। पाणी ऐं सफ़ाई ॿिन्हिनि जो ख़्यालु रखणु घुरिजे।
1: केॾो सियाणो पुटु आहे मुंहिंजो।
0: बाबा इहो ई जासूस तव्हांखे बचाईंदो।
2: साफ़ पाणी महफ़ूज़ ज़िंदगी, दस्तन खां बचा। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन पेश कयो।
3: होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट में वजन जो नवद बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301 91 50

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा।
0: तो छा कजे
1: अदा? दुकान जी मशहूरी कराई अथई
2: 94 ई हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
0: मुझे दुकान जी भेट हलंदी?
1: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आहे।
0: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8743।
3: अपना घरपुर जी ए एफ एम 94।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: सामीन और नाज़रीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप ज़रूर पिलाइएगा।
6: मेहराबपुर के हो तो आवाज़ भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: सिंध असेंबली मां घरेलू मुलाज़िमनि जे तहफ़ुज़ वारो बिल बीमारी मामलनि जे वज़ीर पेश कयो। शजीलना मेमण सवालनि जा जवाब ॾींदे चयो त सिंध सरकार जूं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ते 500 खां वधीक बसूं मुख़्तलिफ़ रूट ते हली रहियूं आहिनि। आपा शेख जाम खान शोरे चयो त बरसातनि सबबि ईंदड़ वोट खे मुंहुं ॾियण पाणीअ जे कुदरती वकरण तां कब्ज़ा हटाए रहिया आहियूं। घरू वज़ीर ज़ालसन अंजार चयो त हैदराबाद ऐं कराची में गुट कयो आहे, कार्रवाइयूं बि जारी आहिनि।
1: को बि सूबो खोराक जी रस बणजी नथो। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा
2: आप सुन रहे थे न्यूज़।
3: बिल्कुल।

0: नस्लन ताई हलंदी आहे कश फाउंडेशन ऐं केन तरफ़ां पेश कयो
1: होलसेल डेड
2: अडर टी लोही दरवाज़ा
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204342460100
3: काबिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब की सहूलत फिजिक्स ब्याजी और इंग्लिश अज्जा एंड मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुक्स अपनी आंखों के नूर बच्चियों जो कि मयारी तालीम है आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0024 निसार एन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
4: इरशाद ऑटोस शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद बा अख्तियार इदारो ऑटोस होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस जी करायो ट्राइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कार कर तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 03201800003

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: Hello, Varna. खबर ना मैं हर वक्त तेरी थकेला थकेला शो हूँ दिया यार
3: तू खाइंदी चाहे स्कूल में बाकी बारन जी मंझन जी मानी डिठिया है।

0: बच्चे ने तताओं ने के रोज अंडा खारा जो मंझन जी मानी में सूफ दी जो तजियो स्कूल में मुआगुर थकेला थकेला ना हो जाए।
1: बारन में कमजोरी अक्सर जरूरी गिजाई जुजन जी घटताई हुंदी आहे जेका उनन जे सिखण जी सलाहियत में रंडक बणजे थी। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।

0: जॾहिं ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे, ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज न करियो। ही फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचर है। मैं हूं NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ यही है, दो कतरे हमर है, लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स एंड जदीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निगदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म एंड दिए कुदरत ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीहन जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहराब। नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा, पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा, एड्रेस इंडस

ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड, किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डन टीएल एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वरजा चौक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडर्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन नज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 03201800003।

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301 54 51 456 तौकीर अहमद 0306 16

0: ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां रात 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाब शाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर।

0: नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद

इरशाद ऑटो से पैंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइजिंग मशीन जरिए जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत-ए-मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हम नवा बहुत जल्द।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्द हजरत मौलाना सैयद हुसैन महाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालदीन हजरात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।

देखिए मोहब्बत दाग की सूरत, बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पोएट्री ऑफ प्योरिटी।

पाकिस्तान ट्रैकड़ी ज़रिए अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। तहरान अमरीकी तजवीज़नि ते जवाब ॾेई चुको आहे। यूएई समेत ख़िते में मौजूद कंहिं मुल्क सां दुश्मनी नाहे। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान यूरेनियम जे बचाउ बाबति पंहिंजे हक़ हथ न खणंदो, नई मामले कंहिं सां ॻाल्हियूं कंदो। ईरान जा जंग जे ख़ात्मे लाइ मुतालबा वाज़े आहिनि। यूएई खे कुझु महीननि जे वाक़नि खां सबक सिखणु घुरिजे। आबनाए हुर्मुज़ बाबति ईरान जा ओमान ऐं ॿियनि सां राब्ता जारी आहिनि।

भारत पहिरीं शिकस्त खां ई ॿाहिरि नाहे निकितो। ॿीहर ललकारियो त भारत जी जाग्राफ़ी तब्दील करे खेसि तारीख़ जो हिसो बणाए छॾींदासीं। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त अफ्रीका ऐं इसराइल में ॿीहर जंग जो इम्कान नाहे। ॿई मुल्क जंग नथा चाहिनि। 28 तरमीम ज़रिए 18 तरमीम खे ख़तमु करण वारियूं ॻाल्हियूं बि शोशो आहिनि।

वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि तरक़ियाती बजट बाबति इजलास, हलंदड़ साल जे तरक़ियाती बजटनि वारनि मनसूबनि जो जाइज़ो वरितो वियो। इजलास में ईंदड़ साल जी तजवीज़ कयल तरक़ियाती मनसूबनि ऐं फंड्स ते ब्रीफिंग, क़ौमी नोयत जे पाणी ज़खीरनि ऐं बिजली वारनि मनसूबनि ते बि इजलास खे आगाही ॾिनी वई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त बहितर कारकर्दगी ॾेखारींदड़ वज़ारतुनि खे बिना देर बजट जारी कई वञे, पाणीअ जा ज़खीरा वधाइण वारनि मनसूबनि खे तरजीह ॾिनी वञे।

सेल्स टैक्स में हर किस्म की छूट खत्म करण जो मुतालबो 430 अरब रुपयनि जा नवा टैक्स लॻाइण जी बि तजवीज़ ॾेई छॾी। ज़रियनि मूजिब IMF मिशन जूं पाकिस्तानी इख़्तियारनि सां बजट ते ॻाल्हियुनि जी अॼु आख़िरी ॾींहुं आहे। IMF सेल्स टैक्स ते छूट ख़तम करण जो मुतालबो कंदी शराब 22.8% मां घटाए 18% करण जी तजवीज़ ॾिनी आहे। इन्फोर्समेंट जी मद में बि 778 अरब रुपया रखण जो चयो वियो आहे।

सिंध असेंबलीअ मां घरेलू मुलाज़मनि जे तहफ़ वारो बिल मंज़ूर। बिल पार्लियामानी मामलनि जे वज़ीर पेश कयो। शर्जील मेमन सवालनि जा जवाब ॾींदे चयो त सिंध सरकार जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ते 500 खां वधीक बसूं मुख़्तलिफ़ रूट्स ते हली रहियूं आहिनि। अपाची वारे वज़ीर जाम खान शोरो चयो त बरसातुनि सबबि ईंदड़ ॿोॾ खे मुंहुं ॾियण पाणी जे कुदरती वहिकरनि तां कब्ज़ा हटाए रहिया आहियूं। सखर बेरा जा बि सभु दर तब्दील थी रहिया आहिनि।

इन वक्त मुल्क की सूरतहाल गंभीर ए बदमनी उरूज से है। केपी ए बलोचिस्तान में सूरतहाल बगावत जड़ी ए सिंध में धाड़ेलन जो रौज है। कराची में मीडिया से गलंदे जेयू सरबराह मौलाना फजल रहमान जो चवण हो तो हुक्मरान अमन अमान बाबत संजीदा नाहन वो जडे चाहन आइन की शिकिल बिगाड़े छदीन था। एहतजाज से मुल्क जहा दुश्मन सड़ो वे तो

सिंध में करप्शन चोट चढ़ियल ऐं अवाम बदहाल थी वियो आहे। अमन अमान जी सूरतहाल बि संगीन थी वई आहे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जे डी ए अॻवान सदर

0: आहे त सालनि खां सिंध में हलंदड़ सिस्टम सूबे खे तबाह करे छॾियो आहे। मुतबादिल क़यादत जी ज़रूरत आहे।
1: वफ़ाक़ी हुकूमत अपोज़िशन खे ॿीहर ॻाल्हियुनि जी आछ करे छॾी। वज़ीर आज़म जे सियासी मामलनि बाबति सलाहकार राणा सनाउला चयो, तव्हां चाहियो था त 24 कलाकनि में अव्हां जे वज़ीर आज़म सां मीटिंग थी सघे थी। वज़ीर आज़म जी आछ मौजूदु आहे। राजा नासिर अब्बास वटि अख़्तियार आहे त अॻिते वधे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सामीन नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन है। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर केल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेड आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
3: खुशखबरी खुशखबरी, हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर।

0: अदा छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
0: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न? अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
0: हाँ दा कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे मुझी एड्रेस
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
0: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
2: 03019 15

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर।

0: जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियूं बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
3: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी ऐं वचड़ंदड़ बीमारन रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां रात 8 वॻे ताईं मरीज़न जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569 0300-3385-69।
4: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहराबपुर। राब्ते जे लाइ 0320।

0: तव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़माल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज A product by Biocon International Pakistan. زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں
2: بینک الحبیب رشتہ भरोसे का
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचर है मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अमेरिका के बीहर गलती वरजाइण ते फैसला तो जवाब देने की धमकी। तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शकाल जी चयो आहे त ईरान खिलाफ नई जारियत जो जवाब फैसला तो तबाह कंदड़ हूंदो।
2: The reason why Project Freedom stopped was at the request of Pakistan. And they said, the Pakistanis said, if you guys stop Project Freedom, we think we can get to a deal. And so in the interest of diplomacy, the president would prefer to have a diplomatic solution to this problem with Iran. We went ahead and agreed to stop it. We agreed to stop it. We had destroyers inside the Persian Gulf. We said, okay, we're going to stop. We're moving our destroyers out. They get fired upon by the Iranians. And that's the activity you saw last week.
3: सदर ट्रंप पाकिस्तान के चवण से प्रोजेक्ट फ्रीडम रोको। सदर ट्रंप इन वक्त भी ईरान मसले जो हल सफारती जरिए चाहे तो। अमरीकी परदेही वजीर मार्को रोबियो है पाकिस्तान प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से वायदे जा इम्कान मौजूद है। तेहरान में फैसला केर कर रो है मुजारा मौजूद है।
1: पाकिस्तानी ट्रैकड़ी जरिए अमरीका से गाल जारी है। तेहरान अमरीकी तजवीजन से जवाब दे चुको है। यूएई समेत खिते में मौजूद कें मुल्क से दुश्मनी ना है। ईरानी परदेही वजारत के तर्जमान इस्माइल बकाई है तो ईरान यूरेनियम के रचाव बाबत पैं हक हथ न खणंदो नई मामले से कें से गाल ईरान जहा जंग के खात्मे लाय मुतालबा वाज़ेह। यूएई के कुछ महीनों के वाकन का सबक सीखण घुर्जे। आबनाए हुरमत बाबत ईरान जहा ओमान बेन से राबता जारी है।
3: खिते में जटादार अमन ए इस्तेकाम जो वायदल सिफारतकारी गालियों आयन थुरियो सबर जो मुजाहरो करण सा गड आलमी कानून तहत पेंजो जिम्मेवारियों पूरी कन। वजीर आजम शहबाज शरीफ यूएई में एटमी बिजली घट ते ड्रोन हमले की मजम्मत कंदे चयो है त मुश्किल वक्त में यूएई हुकूमत ए अवाम सा गड आयन।

0: पाकिस्तान में मुकर्रर सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद के नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात बेतरफन लागापन समेत खिते की सूरत हाल से गालू मौजूदा सूरत हाल में थन्दड़ अकबराई से भी गौर विचार किया। सऊदी सफ़ीर पारा खिते में उन क्याम ला पाकिस्तानी कोशिशों की वाखाण।
1: भारत पहरी शिकस्त का ही बाहर ना निकतो बीहर ललकारो तो भारत की जोग्राफी तब्दील करे खेस तारीख जो हिस्सों बढ़ाए छींदी। दिफा वाले वजीर ख्वाजा आसिफ है तो अमरीका इसराइल में बीहर जंग जो इम्कान ना है। कई मुल्क जंग न था चाहन। 28 तरमीम जरिए 18 तरमीम के खत्म करण वाली गालू भी शोशो है।
0: वजीर आजम की सदारत हेठ तरक्याती बजट बाबत इजलास हलंदड़ साल के तरक्याती बजट वारन मनसूबन जो जायजो वरतो वयो। इजलास में इंदड़ साल के तजवीज कल तरक्याती मनसूबन फंड्स से भी ब्रीफिंग कौमी नोयत के पानी जखीरन बिजली वारन मनसूबन से भी इजलास की आगाही दिनी वही। वजीर आजम तो बेहतर कारकर्दगी दिखारींदड़ वजारतन के बिना देर बजट जारी कई वे पानी जहा जखीरा वधायण वारन मनसूबन के तरजीह दिनी वे।
1: IMF जो पाकिस्तान का सेल्स टैक्स में हर किस्म की छूट खत्म करने जो मुतालबो 430 अरब रुपये का नवा टैक्स लगाने की भी तजवीज दई छी। जरियन मूजिब IMF मिशन जो पाकिस्तानी इख्तियार बजट ते गालियन के आखिरी ढी है। IMF सेल्स टैक्स से छूट खत्म करने जो मुतालबो कदे शरा 22.58% में घटाए 18% करने की तजवीज।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर।

0: ATN News.
1: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स एंड जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी एंड चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म एंड दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्द हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे मेरी दरख्वास्त है तमाम वालदैन हजरात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए